0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। ये बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:08 हो रहे हैं। यहाँ पे 4 घंटे बैठेंगे, एक साथ करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो भाई वक्त बिताने का हमारा सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं, बात करने का हमारा सिलसिला शुरू करने वाले हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं एक जर्नी।
1: हम चले बहारों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज हैं, अब क्या करें।
0: इस जर्नी में तारीफें तारीफें होंगी भाई।
1: वाल काले काले शाकुड़े, तेरी मोरनी जी जाल कुड़े,
0: अब भाई इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरा एक स्टेट कैसा होगा अभी।
1: अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, अमन जब साथ है तेरे, अमन को इंतजारी क्या।
0: देखिए सिंपल इंसान है हम, जो है मन में वो बिल्कुल मुंह में आ जाता है और हम बता देते हैं लोगों को कि देखो ये चल रहा है अभी। लोग पूछते हैं ना क्या चल रहा है, तो बता देते फॉग चल रहा है। फॉग नहीं चल रहा है, मन में जो जज्बात चल रहे हैं हम वैसा का वैसे जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं जरा, अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए। 3311063 ये है हमारा नंबर, तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। बताइए हमें क्या हाल है आपके, क्या क्या किया आपने और आज के इरादे क्या है, क्योंकि इंटेंशन इंपॉर्टेंट है बाबू। यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: वो पाट दे तुड़ा।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन

स्टेशन क्लॉक में 6:20 हो रहे हैं। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM बिंदास मॉर्निंग में। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस आए हैं, तो चलिए एक एक करके मैसेजेस जरा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ऋषिन का मैसेज आया है। ऋषिन ने लिखा है, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे करके जियो बिंदास करके मुझे मैसेज किया है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ। जुल्फी भाई का मैसेज आया है। जुल्फी भाई ने एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम विनिंग, योर स्ट्रगल्स डेवलप योर स्ट्रेंथ्स, व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डिसाइड नॉट टू सरेंडर, दैट इज स्ट्रेंथ। गुड मॉर्निंग करके, बिल्कुल सही बात। देखिए, मुश्किलात तो जिंदगी में आती रहेगी, मगर उससे हमें बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, तब जाके जो हमारी असली ताकत है वो उभर कर बाहर आएगी और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आसमा का मैसेज आया है। आसमा ने लिखा है,

0: If you truly wish to improve your self-confidence, self-esteem and self-worth, stop allowing other people to be responsible for them. क्या बात कर दी भाई, क्या बात कर दी, बिल्कुल बढ़िया बात. एक और कोट है विच इज वेरी सिमिलर टू दिस. वो कहता है कि भाई अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी खुशी की चाबी हमेशा अपने हाथ में रखो ताकि जब भी हमें खुशी की जरूरत हो तो चाबी निकाल के हम खुश हो जाए एकदम से. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है आसमा जी ने. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. और अबरार भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग मुझे भेजा है. और शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने भेजा है हैप्पी वेंसडे, मे गॉड्स लव एंड ग्रेस बी ऑलवेज विथ यू एंड योर लव्ड वंस, गॉड ब्लेस योर डे करके. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. आपको भी काफ़ी बढ़िया और प्यारा और बिंदास दिन हम विश करते हैं. और मुझे मैसेज आया है मोहम्मद असलम भाई का, इन्होंने भी एक गुड मॉर्निंग भेजा है. थैंक यू सो मच जी, आपको भी काफ़ी बढ़िया और बिंदास गुड मॉर्निंग. नाजमीन जी का मैसेज आया है और नाजमीन जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग, मे योर डे बी एज ब्राइट एंड ब्यूटिफुल एज द फर्स्ट लाइट ऑफ डॉन. वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. काफ़ी नेचर ओरिएंटेड जो है एक कोट दिया है. थैंक यू सो मच, आपको भी काफ़ी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं. अभी फिलहाल यहाँ पे गाने सुनते हुए आगे बढ़ते हैं. और अगर आपने अभी भी ट्यून इन किया है जानी, तो इंतजार किस बात का है, सीधा मैसेज कीजिए 3311063 पर, बताइए अपने हाल क्या है, क्या चल रहा है सब कुछ. फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर हम प्ले करना चाहेंगे. गानों के उस पार जब हम वापस आएंगे तो एक सवाल लेकर आएंगे. तैयार हो जाइए ब्लैकबोर्ड स्टोरीज के लिए. टिल देन स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: बात है सर, क्या पर ये बात है.
3: Awesome.

0: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
0: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
2: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सदैव, और यहां पे स्टेशन क्लॉक में अभी 6:32 हो रहे हैं और वक्त आ चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: और आज ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में हम बहुत ही सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहेंगे। देखते हैं कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सब से कितने तेज हैं। सवाल यह है, वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल सिटी कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, ये आपको मुझे बताना है। और चलिए मैं एक क्लू दे देता हूँ, ये जो है साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता भाई, देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैंने बता दिया है, इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते। तो मुझे बताइए आप, कौन सी सिटी है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल सिटी है? तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले, अभी के अभी आप मुझे मैसेज कीजिए। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और प्ले करते हैं एक बहुत ही प्यारा गाना दम मारो दम मूवी का, ऐश किंग और सुनिधि चौहान की आवाज में। टीएमओ, स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
0: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.
5: Radio Olive

0: मैं हाँ हरभजन मान तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

क्या बात है भाई, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:47 हो रहे हैं और यहां पे जो है मेरे पास जवाब आए हैं मेरे सवाल के। मैंने पूछा था कि भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल सिटी कौन सा है, और मेरे पास जवाब आया है। मुझे दीपक जी ने मैसेज भेजा है लापाज बोलीविया, उन्होंने मैसेज किया है। अनिल जी ने मुझे मैसेज किया है लापाज बोलीविया, उसके साथ साथ मुझे अहमद भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी लापाज बोलीविया मैसेज किया है। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आया SS स्टार कुछ ऐसे बना हुआ है, इनके इसमें नाम नहीं लिखा है। सर नाम बता दीजिए प्लीज, सर मैम आप जो भी हैं प्लीज नाम बता दीजिए। मगर सवाल का जवाब बिल्कुल सही दिया है लापाज बोलीविया। उसके साथ साथ मुझे इरफान भाई का मैसेज आया है, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आप सबने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सही जवाब दिया, इसलिए आपके लिए यहाँ बजेंगी तालियां। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब जरा मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल दे देता हूँ। जो लापाज जो है इसको हाईएस्ट कैपिटल सिटी बोला जाता है, और वो क्या कहते हैं बोलीविया में स्थित है, और इसके साथ साथ लापाज जो है 3650 मीटर्स अबव सी लेवल में बैठता है, और काफ़ी ऊंचा है ये, मतलब सी लेवल से अगर देखा जाए। जो एंडीज माउंटेन रेंज है उसके प्लेटू में जो है ये सिटी जो है स्थित है, और वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट कैपिटल सिटीज़ में आता है। मगर इससे भी हाईएस्ट सिटीज़ हैं, कैपिटल सिटीज़ में लापाज आता है। एनीवे आप सबने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया है, थैंक यू सो मच। ब्लैकबोर्ड स्टोरीज़ में बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों ने प्रूफ कर दिया कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सबसे बहुत ही बढ़िया तरीके से तेज़ हैं। तो इसी खुशी में काम करते हैं, एक साथ बैठ कर एंजॉय करते हैं और सुनते हैं फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 double Nasim Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक ने 7:07 हो चुके हैं और यहाँ पे जो है, चलिए मौसम का हाल जरा देख लेते हैं, कैसा है, क्या चल रहा है, जरा टेम्परेचर अभी कैसा हो रहा है, इसके बारे में जरा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। अभी का भाई हमें देखने को मिल रहा है टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस का, और उसके साथ साथ आज का जो हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा ये बताया गया है कि 41 डिग्री सेल्सियस जाएगा, मगर मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा भी हो सकता है। और आज का लोएस्ट टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस, और अभी फिलहाल हवाएं बह रही हैं 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और मेरे मन में रिक्वेस्ट है कि भाई हवा थोड़ी ठंडक दे दो यार, प्लीज। एनीवे देखते हैं हवा ठंडक देगी कि नहीं, मगर आपको प्रिकॉशन ज़रूर लेने हैं, हाइड्रेटेड रहना है, उसके साथ साथ कोशिश करें लाइट कलर्ड क्लोथिंग जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और ज़रा बताइए मुझे भाई बाहर के नज़ारे कैसे, दिखाइए मुझे, फ़ोटोज़ भेजिए 3311106 पर। और

जरा बाहर के नजारों से हमें रूबरू कराइए, क्योंकि हम तो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, हमें पता ही नहीं कि भाई बाहर क्या हो रहा है। तो यही बात बताते हुए, एक रिक्वेस्ट करते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। मातृभूमि मूवी का गाना हम प्ले करना चाहेंगे अयान लाल और श्रेया घोषाल की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. टीएनसी अप्लाई. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुना है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
4: गुलराज सिंह
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
4: जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:20 हो रहे हैं और यहां पे जो है हमारे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं। मुझे अनिल जी ने एक फोटो भेजा है, उसके साथ साथ मुझे अहमद भाई ने भी एक फोटो भेजा है, सतीश कुमार जी ने एक फोटो भेजा है उन्होंने, और उन्होंने अपने बेटे के साथ एक फोटो भेजा है, लिखा है गुड मॉर्निंग फीफा 2026 के एक सेलिब्रेशन से रिलेटेड एक फोटो मुझे भेजा है। दोनों ने अर्जेंटीना की जर्सी पहनी और आई थिंक ये शायद फीफा वर्ल्ड कप 2022 के टाइम पे उन्होंने फोटो खींची होगी। अल रेला भी उनके हाथ में है। काफी एक अच्छा फादर सन मोमेंट जो है इन्होंने भेजा है मुझे। थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगा आपने फोटो भेजा। और साथ साथ फीफा अपडेट्स भी देंगे हम थोड़ी देर में, नेक्स्ट आवर में डिटेल में हम फीफा अपडेट्स देंगे, क्या क्या हुआ, क्या क्या होने वाला है, उन सबके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट प्ले करते हुए आगे बढ़ेंगे और गानों के उस पार जब हम आएंगे वापस तो हम बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके वेलबींग के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
0: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, C Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। अभी आप स्टेशन क्लॉक में 7:33 हो रहे हैं और चलिए शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो फिट है तो हिट है। में आज हम मेंटल वेलबींग के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात जो है आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। मैंने ये सुना है कि ग्रीन स्पेसेस में टाइम स्पेंड करने से ब्लड प्रेशर को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है, यानी कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट किया जा सकता है। तो उसके बारे में जरा डिटेल में पढ़ते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि पार्क्स, गार्डन्स या फिर नेचुरल एनवायरमेंट्स जहाँ पे हम टाइम स्पेंड अगर ज़्यादा करें तो बॉडी जो है बहुत ही अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है एक्सपीरियंस करने लग जाती है। नेचर के कांटेक्ट में आने से स्ट्रेस लेवल्स जो है कम हो सकते हैं, और क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है, इसलिए ग्रीन स्पेसेस इनडायरेक्टली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छे से सपोर्ट करते हैं। स्टडीज ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने से हार्ट रेट जो है वो काम हो सकता है, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल लेवल्स ये सब रिड्यूस हो सकते हैं और नर्वस सिस्टम ज़्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में आ सकता है। नेचर का इफेक्ट सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से नहीं होता, इवन अगर आप पार्क में क्वाइटली बैठकर ग्रीनरी देख रहे हो ना तो भी ब्रेन को एक रिस्टोरेटिव इफेक्ट जो है मिल सकता है। ग्रीन स्पेसेस में मेंटल फटीग को कम जो है होने के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं और रिलैक्सेशन जो है और अच्छे से होने लग जाता है। अगर हम वॉकिंग या लाइट एक्सरसाइज भी करते हैं नेचर में तो बेनिफिट्स और भी बढ़ सकते हैं, बिकॉज आपको मूवमेंट प्लस स्ट्रेस रिडक्शन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलता है। सिंपल हैबिट्स है, 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट आप पार्क में चलिए, गार्डन में बैठिए, ट्रीज और ग्रीनरी वाले एरियाज में जो है अच्छे से ब्रेक लीजिए। और सबसे खास बात कतर की है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे पार्क्स जो है बना रखे हैं। अलवकरा पार्क में गया था रिसेंटली, बहुत बढ़िया पार्क, बहुत ही बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया मुझे। उसके साथ साथ मुझे मेरे एक फ्रेंड ने शायद एक पार्क सीरिंग रोड के आसपास कहीं एक पार्क का एक वो दिखाया था, वो भी काफ़ी बढ़िया था। अब मे बी मुझसे एड्रेस गलत हो सकता है, आई डोंट रिमेम्बर इट करेक्टली, मगर उन्होंने भी एक पार्क के बारे में मुझे बताया था, वहाँ पे वॉक करने के लिए जाते थे। काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ भी भेजे हैं मुझे, काफ़ी एस्थेटिक पार्क। तो कतर जो है हमेशा हमारे वेलबींग के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, पार्क्स जो है यहाँ पे बना के रख रहा है, बस उसमें जाके टाइम स्पेंड करना चलना वो तो हमारे हाथ में है, तो ये मत भूलिएगा। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। मीका पाजी, साजिद खान और शाम की आवाज़ में सुनते हैं हाउसफुल का गाना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply. Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
0: डॉक्टर ऑन एयर, डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थ केयर।
4: डू यू नो द नंबर वन रीजन व्हाई एडल्ट्स लूज देयर टीथ इज नॉट बिकॉज ऑफ कैविटीज, इट इज बिकॉज ऑफ गम डिजीज, आल्सो कॉल्ड एज पीरियोडोंटाइटिस। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद बासिल, आई एम अ पीरियोडोंटिस्ट फ्रॉम नसीम मेडिकल सेंटर। नाउ दिस स्टार्ची एंड शुगरी फूड डेब्रिस दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन योर माउथ आफ्टर ईच ऑफ आवर मील्स इंटरैक्ट्स विद सर्टेन बैक्टीरिया एंड फॉर्म्स अ सॉफ्ट कोटिंग ऑन द टीथ कॉल्ड एज plaque, which can be removed by proper toothbrushing. But if left behind, it hardens to form something called as calculus or tartar, which can only be removed by professional cleaning. When untreated, it irritates the gum tissues, leading to inflammation of the gums. This inflammation then spreads to the bone supporting your teeth, causing bone loss and ultimately loss of your teeth. So make sure you visit your dentist before you go from a beautiful smile to a toothless smile.
0: Dr. On Air, Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
0: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.
7: I'm Anil Kapoor.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई, कतर के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि डिजिटल सर्विसेज जैसे ई गेट्स और मेट्राश एयरपोर्ट पर वेटिंग टाइम जो है कम करने और ट्रैवल प्रोसेस को फास्ट बनाने में बहुत मदद कर रहे हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी खुद ये यूज़ कर चुका हूँ। तो आज एक रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से ही हमें पता चल रहा है कि 76 ई गेट्स अराइवल और डिपार्चर में अवेलेबल हैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। सिटीजन्स, रेसिडेंट्स और विजिटर्स के लिए फ्री सर्विसेज हैं। इमिग्रेशन प्रोसेस सिर्फ 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट हो सकता है। इससे फेशियल रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के थ्रू एंट्री एग्जिट प्रोसेस जो है होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ई गेट यूज करने में दिक्कत आ सकती है अगर नया पासपोर्ट अपडेट नहीं किया गया हो, पर्सनल फोटो आउटडेटेड हो, ट्रैफिक वायलेशंस या पेंडिंग वीसा इश्यूज हो, रेसिडेंस परमिट एक्सपायर हो गया हो, या फिर व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा कतर के बाहर रहा हो। अब इसके साथ साथ मैं मेट्राश ऐप के बेनिफिट्स भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ फिर से। ट्रैवल से पहले ट्रैफिक फाइन, ओवरस्टे फाइन, पेंडिंग ड्यूज और ट्रैवल बैंस चेक किए जा सकते हैं ताकि हम काफी स्मूथ तरीके से अपना ट्रैवल जो है कंप्लीट कर पाए। रेसिडेंस परमिट को ओल्ड पासपोर्ट से न्यू पासपोर्ट में ट्रांसफर करना भी पॉसिबल है। ऐप में 440 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनमें 100 नए सर्विसेज भी शामिल हैं। अब एडिशनल ट्रैवल फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीस, फाइंस और कुछ ट्रैवल रिलेटेड पेमेंट्स मेट्राश के थ्रू किए जा सकते हैं। अबू समरा बॉर्डर के लिए प्री रजिस्ट्रेशन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, जिससे लैंड ट्रैवल प्रोसेस जो है और आसान हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें, है ना? बहुत ही बढ़िया। यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM, जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Amaya Dastur on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहाँ पे जो है हम चलिए थोड़े अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, उस गेम के बारे में जो सिर्फ एक गेम नहीं, ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो भाई अभी तक जो है तीन दो मैचेस हो चुके हैं, तीसरा मैच जो है चल रहा है लाइव अभी। अगर हम ग्रुप आई की बात करें तो ग्रुप आई में आज इराक वर्सेस नॉर्वे मैच हुआ था, जिसमें 4-1 से नॉर्वे ने जो है मैच जीत लिया है, अपने हाथ में कर लिया है। उसके बाद का जो मैच था ग्रुप जे में, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, अर्जेंटीना वर्सेस अल्जीरिया। अब इस मैच के बारे में जब हम बात कर रहे थे, पहले प्री मैच जब बातें चल रही थी, लोग बोल रहे थे कि भाई अल्जीरिया 10 टीमों को हरा के आ रही है, काफ़ी बढ़िया मोमेंटम में आ रही है, मगर अल्जीरिया भिड़ रही थी 2022 का तो फीफा वर्ल्ड कप के विनर के साथ, ऐसे थोड़ी ना हरा पाएंगे, और हरा भी नहीं पाए। 3-0 से अर्जेंटीना ने जो है अल्जीरिया को पछाड़ दिया, और ये तीनों गोल मारे हैं लायनल मेसी ने, जी हाँ, द लेजेंड, द गोट ने, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। फैंस जो है भाई, मुझे लगता है कि जनता क्रेजी हो चुकी है इस मामले में, बहुत ही अलग लेवल का जो है अप्रोर जो है आया है, फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश है इस मामले में। और अभी एक मैच चल रहा है ऑस्ट्रिया वर्सेस जॉर्डन, जो 1-1 के स्कोर में चल रहा है, 54th मिनट चल रहा है अभी मैच का। और आज एक और मैच है ग्रुप के का, जिसके लिए भी फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये मैच है पोर्चुगल और डीआर कॉन्गो के बीच में, जो आज शाम को होने वाला है। देखते हैं इसमें कौन धुरंधर बनेगा, कौन सी टीम जीतेगी। अभी फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, और बाकी अपडेट्स बताएंगे हम कि कल कौन से मैचेस होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
3: इन एसोसिएशन विद।
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
7: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 8:35 हो रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
3: Your trusted remittance partner.
0: और भाई यहाँ पे एक चीज में एक्चुअली मेरे से छूट गई थी। आज जो है इंग्लैंड और क्रोएशिया का मैच भी है, जो भी काफी मतलब एक बहुत ही अच्छा एक फैंस का अटेंशन जो है इस मैच के लिए भी है, क्योंकि लुका मॉड्रिच जो है क्रोएशिया से खेल रहे हैं। उसके साथ साथ इंग्लैंड की टीम जो है इस बार थोड़ा डिटरमाइंड हो गया है कि भाई इस बार तो अपने को हाथ लगाना ही है वर्ल्ड कप को। बहुत साल हो गए, बहुत ज़्यादा साल हो गए कि हमें वर्ल्ड कप मिला नहीं है, तो देखते हैं करके। हैरी केन भी काफ़ी जो है इसमें इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ बतानी है जो होने वाले हैं कल के मैचेस। ठीक है, कल जो होने वाले हैं उसमें घाना और पनामा जो है आपस में भिड़ रहे हैं, ग्रुप एल का मैच है। और उसके साथ साथ ग्रुप के में उज्बेकिस्तान और कोलंबिया का मैच आने वाला है। ग्रुप ए में चेकिया और साउथ अफ्रीका का मैच है। एंड ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना का मैच चलने होने वाला है। तो ये सारे चार मैचेस जो हैं कल होने वाले हैं, देखते हैं इनमें से कौन कौन विनर होगा। वो अपडेट तो हमें कल ही पता चलेगी, मगर आज के जो दो मेन मैचेस होने वाले हैं वो है पोर्चुगल वर्सेस डीआर कांगो एंड इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया। अब इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया में अगर मैं बोलूँ तो दोनों काफ़ी अच्छी टीम है, टक्कर की टीम है। देखते हैं इनमें से कौन आगे निकलता है, कौन पॉइंट स्कोर करता है। फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और सोना मोहपात्रा की आवाज़ में फुकरे मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
2: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और आपको यहां पे काफी बढ़िया एक बात हम बताना चाहेंगे टेक जोन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई टेक जोन में हम बात करेंगे स्नैप के बिल्कुल नए स्पेक्स के बारे में। जी हाँ, काफी बढ़िया जो है एक अपडेट हम देख सकते हैं, और स्नैप ने जो है पूरी दुनिया को जो है हिला दिया है अपने इस नए इनोवेशन के साथ। हम उसके बारे में जरा बात करते हैं। तो स्नैप हैज केम अप विद सम रियली अमेजिंग टेक स्टफ, और जैसे हम सब जानते हैं कि रेबान ने जो है अपने ग्लासेस निकाले थे, मेटा ने अपने ग्लासेस निकाले थे, सिमिलरली स्नैप ने अपना स्पेक्स लॉन्च किया है SPEC, एक ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास। अब उसके बारे में जरा मैं बताता हूँ। ये एक AR ग्लास है विच इज डिजाइन टू ब्रिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू रियल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि बिना फोन में देखे डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने आंखों के सामने देख सकते हैं। ये एक फुली स्टैंड अलोन डिवाइस है, ना कोई वायर है, ना कोई फोन है, कोई एक्सटर्नल प्लग की जरूरत है। काफी लाइट वेट डिजाइन है इसका, 132 to 136 ग्राम जो है इसका वेट रहता है, जो हम कंफर्टेबली पूरे दिन पहन सकते हैं। इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो 51 डिग्री और फील्ड व्यू जो है हमें मिलता है विद सपोर्ट फॉर 16 मिलियन कलर्स। और डिस्प्ले एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो एक 24 इंच डेस्कटॉप मॉनिटर को जब हम वर्क में यूज करते हैं वो जो एक्सपीरियंस होता है समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट, एंड 115 इंच सिनेमा स्क्रीन फॉर एंटरटेनमेंट। और इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक लेंस भी है जो ऑटोमेटिकली क्लियर टू टिंटेड के हिसाब से अपने कलर्स को भी चेंज कर देता है। काफी कूल एक डिजाइन है, इसके बारे में और भी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: भाई यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत आई है जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकती और इनके बारे में कोई मिस्टेकनली कुछ सोच भी नहीं सकता। ये जैसे ही आई चल के हमारी स्टूडियो में तो रोशनी पीछे पीछे आई, इतनी रोशनी भर गई स्टूडियो में कि मैं बता नहीं सकता कि क्या करूं, मेरी आंखें चौंधिया गई, मैं आंखें बंद करके जो आपसे बात कर रहा हूं, मुझे माइक का बटन कहाँ ढूंढना पड़ रहा है, इतनी दिक्कतें जो हैं आ चुकी हैं, मगर इनके आने से दिक्कत नहीं, दिक्कतें दूर हो जाती है। आप गेस कीजिए कौन हो सकता है, मैं 5 तक गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। आपने अगर गेस नहीं किया तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। ये है तनीषा मेरे साथ। तनीषा मैडम वेलकम टू बिंदास मॉर्निंग्स आफ्टर सो लॉन्ग, कैसा लग रहा है आपको?
1: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट्स बंद कर दूं तेरी आंखें?
0: लाइट बंद हो गई, आप ही की रोशनी से
1: कंफर्टेबल नहीं फील कर रही
0: है, आप ही की रोशनी से जो है स्टूडियो में ऐसे चमक आई है, लाइट तो बंद कर दीजिए।
1: कैसे आप चीज को इतना एग्जैजरेट कर लेते हो और ओवर एग्जैजरेट कर लेते हो?
0: ये टैलेंट है जी थोड़ा, और थोड़ा तो संगत का असर भी है।
1: मैं तो मतलब ऐसी चीजों को नहीं करती, आई डू बट नॉट सच थिंग्स।
0: नहीं, आप भी करते हो, ऐसा नहीं करते। जैसे कि कल मैंने खाना खाने की बात की है, फिर खाना ऑर्डर करने की बात की, तो तनीषा बोली 10 घंटे से ये सोच रहा है। मैंने बोला 10 घंटे तो हमारा शिफ्ट पूरा होता नहीं है।
1: तो वो वही मैं ऐसी ही चीजों में करती हूँ, व्हेन आई एम लाइक टेलिंग सम स्टोरी।
0: अच्छा,
1: सो ऐसे ही होता है मेरा कि यू नो 10,000 years तक हम यही सोचते रहे, बट इट डजंट रियली मीन दैट, राइट?
0: तो अब आपको अगर वो समझ में आता है तो आप ये भी समझ ही जाओ ना।
1: दुष्ट बाहर मिलते मुझे।
0: अरे डरते नहीं है, ठीक है, डरते नहीं है ना। मैं सुदेव स्नायर हूँ, मैं फायर।
1: वाओ, पुष्पा फ्रॉम टेमू,
0: शीन आई गेस। बट या अभी स्टेशन क्लॉक में 9:08 हो रहा है और यहाँ पे जो है यार तनीषा, मैं बहुत ही बढ़िया बात शेयर कर रहा था लोगों के साथ, ठीक है। स्नैप करके एक कंपनी है, इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी एंड दे हैव लॉन्च्ड देयर स्पेक्स, ठीक है। स्पेक्स जो है एक ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास है, बहुत ही कूल फीचर्स हैं। अब इसके एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर्स के बारे में मैं बात कर रहा था। सो उसका एआई जो है, कहा गया है कि एआई कैन सी व्हाट यू सी एंड प्रोवाइड कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंस। जो एआई है उस डिवाइस में, वो जो आप देख रहे हो वो देख सकता है, उसके हिसाब से भी कॉन्टेक्चुअल असिस्टेंस दे सकता है, रियल टाइम नेविगेशन आपको दे सकता है, मेजरमेंट्स दे सकता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलेज दे सकता है, प्रोडक्टिविटी सपोर्ट दे सकता है। मेरा तो अभी मन ये है कि यार काश एग्जाम्स में भी ये जो है ये स्पेक जरा ओके कर दिया जाए।
1: बस इसीलिए तुम्हारे टाइम नहीं आए थे, गलत इस्तेमाल करते हो तुम शक्तियों का। बट मेटा भी लेकर आया था ना, एंड जब वो एक्चुअली उसका लाइव दिखा रहे थे कि यू नो हाउ टू यूज दैट, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई थी।
0: जी, ये तो मुझे लगता है हर जगह होती है। मैं ये अभी अगर गड़बड़ की हम बात करें तो साइबर ट्रक का जो लॉन्च था सबसे पहला, एलन मस्क भाई बोले कि भाई इट इज बिल्ट लाइक ए टैंक, कुछ नहीं होगा, खरोच तक नहीं आएगी इसे। इन्होंने ग्लास फेंका, इसका विंडशील्ड टूट गया, ठीक है। तो वो एक मीम बन गया था उसके बाद अभी मेटा का। अब ये तो चलता रहता है, एक बार
1: टेक्नोलॉजी का वही है, आप इतना पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते।
0: तो मेरे साथ एक किस्सा था, मैं बाल बाल बच गया था एम्बैरस होने से। तो मैं इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था वहां पे वो लोग जो है एक बुक फेयर नहीं, एक लिटरेचर फेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं गया था वहां पे एंड मेरे पास जो है एक शंख था, ठीक है, कॉन्च शेल, ठीक है। तो वो ब्लो करना बहुत अच्छा होता है फॉर योर थ्रोट एंड हमारे हम वॉइस इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो वॉइस एक्सरसाइज के लिए जो है मैं वो ब्लो करता रहता था ऑफिस में भी जब बैठ के से करता रहता था। सो एक दिन एकदम से मार्केटिंग के भैया के बोले काम कर, ओपनिंग सेरेमनी में ना तू ये बजा।
1: अरे नहीं हुआ,
0: मैंने बोला कि क्या बात कर रहे हो आप? बोले नहीं, ओपनिंग सेरेमनी में तू ये बजा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत मस्त होगा, ये होगा, तेरा भी नाम बन जाएगा। मैंने बोला एक मिनट, मैं 5 मिनट में सिर्फ 10 सेकंड ढंग से बजा पाता हूँ, बाकी 4 मिनट 50 सेकंड आवाज आती रहती है उसमें और कुछ नहीं होता। आप चाहते हो कि मैं हजारों लोगों के सामने एम्बेरस हूँ और आप लोगों को एम्बेरस करूँ, आई एम रेडी फॉर इट, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर डू यू वॉन्ट इट? एंड लाइक चल ठीक है, तू बजा के तो दिखा। किस्मत अच्छी थी उस टाइम पे मेरे से मैसअप हो गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं है, और लोग भी बैठे थे, मार्केटिंग के लोग बैठे थे, जो बाकी डिपार्टमेंट के लोग वो आए थे, चलो यार ये करेंगे, थोड़ा कूल बनने के लिए ना वो लोग उस डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने सोचा कि ये हम इंक्लूड करेंगे तो बॉस सोचेंगे कि वाह भाई क्या कूल बात कर दी, इसका अगले अप्रेसल में 4 साल का अप्रेसल इसे एक साथ दे दूंगा।
1: sure,
0: मैंने बोला ऐसा नहीं होने वाला भाई, अपनी बेइज्जती करा के मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। बट एनीवे बच गया, उन्होंने ज्यादा पेस्टर नहीं किया मुझे, मगर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार अगर उन्होंने हाँ बोल दिया होता,
1: फेमस होता तू?
0: फेमस नहीं, इनफेमस होता मैं,
1: फेमस होता फॉर बीइंग
0: नोटोरियस भी बोल सकते हैं हम इन्हें। बट एनी वे यही बात बोलते हैं हम, जरा आगे बढ़ते हैं। तनीषा यहीं पे हमारे साथ, थोड़ी बात करनी है तनीषा के साथ, कुछ चीजें पूछनी है मुझे। फिलहाल यहाँ पे ए खुदा गाना सुनते हैं अल्तमिश फरीदी की आवाज में फ्रॉम द मूवी गिनी विद सनी। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: जियो बिंदास
0: मेरी जान।

0: Olive Short Break. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती है जिनकी हंसी सुनते

0: लोग बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, जनता के पैरों तले जमीन फिसल जाती है और उनकी बातें सुन के लोग जो है पूरा ट्रैफिक ऐसा रुक सा जाता है। वो है मेरे साथ तनिषा मैडम, वेलकम टू द स्टूडियो, हाउ आर यू फीलिंग?
1: मैं क्या रेड लाइट हूँ क्या, ट्रैफिक रुक जाता है? व्हाट वाज दैट?
0: मतलब वो आपकी आवाज सुन के लोग एकदम से ऐसे स्टॉप से हो जाते हैं।
1: ठीक है,
0: वो कहते ना कि साइडर ओपी सुना है आपने?
1: यस।
0: जिनके आने से सब साइड हो जाते हैं। आप स्टॉपर ओपी, आप
1: क्या साइड हो जा फिर तू?
0: नहीं, आप स्टॉपर हो ना
1: तो स्टॉप हो जाते।
0: मैं स्टॉप ही तो हूँ, मैं बैठा ही तो हूँ, कहाँ हिल रहा हूँ मैं इधर उधर?
1: मुंह चल रहा है तेरा?
0: वो तो चलेगा भाई, वो तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछने के लिए आया था तनिषा से। ठीक है, तो मैं ना थोड़ा ऐसे कॉन्टम्पलेट कर रहा था अपने लाइफ के बारे में, चीजों के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा था, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था। वाह, इतने भारी भारी सब एक साथ कर रहा था मैं। बहुत टाइम मिल गया था ना मुझे, तो
1: काम देना पड़ेगा तुझे, बहुत फ्री घूम रहा था।
0: ऑफिस आवर्स के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं बैठे बैठे मैंने सोचा कि यार कतर में आने से पहले और कतर में आने के बाद मेरी आदतों में कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, कुछ नई आदतें जो हैं मेरे साथ जुड़ी हैं, तो मेरी आदतें क्या नई बनी हैं उसके बारे में बताऊंगा। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कतर में आने के बाद आपकी नई आदतें क्या क्या शुरू हुई हैं, कुछ ऐसा जो आपने यहाँ आने के बाद करना शुरू किया, समथिंग जो पहले आप इंडिया में नहीं करते थे, या फिर जो आप करते थे उसका एक डिफरेंट वर्जन यहाँ कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट।
1: Like India mein toh it's absolutely different. It's the comfort of your home.
0: Okay.
1: You don't have to think about what to cook. You don't have to think about your laundry. You don't have to think about cleaning your home.
0: Okay.
1: You don't have to think about anything at all.
0: Yes.
1: Yahan sab kuch aapki apni zimmedari hai.
0: True.
1: So khana kya banana hai? Achha. Kal breakfast mein kya khaungi? Yaar breakfast ready kare bina nahi so sakti. Lunch ke liye dekhna hai.
0: Dekho Tanisha ka
1: dinner
0: lunch
1: karna chhod diya hai.
0: Ye bahut important hai Tanisha ka lunch banana. ना, क्योंकि उसी पे मेरा भी लंच करता है। तो हाँ, बहुत बढ़िया।
1: वीकेंड्स हैव बिकम द क्लीनिंग, लॉन्ड्री एंड ग्रोसरी डे,
0: बट दीज आर डोमेस्टिक थिंग्स, राइट? जो अब यूजुअली आपको करना पड़ेगा, अपने सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा।
1: आई मीन दैट्स द मेजर चेंज इन लाइफ।
0: ओके, मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसी चीजें या फिर कुछ ऐसे हॉबीज जो आपने, या फिर कोई इंटरेस्ट जो यहाँ पे आके आके आपको लगा कि यार ये करते हैं, या फिर ये चीज जो है डेवलप करते हैं।
1: No, I brought my coloring books with me. Like, okay. I bought here also. So, very rarely I do, but I still do.
0: तो मैं अपना बताता हूँ आपको थोड़ी ही देर में, जरा इंतजार करिए। okay. आप गाने सुनते हैं यहाँ पे, जबरदस्त हिट प्ले करता हूँ मैं, और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: 106.3 FM, Gio Bindas. दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और मेरे साथ है
1: तनीषा।
0: और तनीषा मैडम, यार एक छोटी सी बात बताता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। कल शाम को मैं जरा बाहर गया था, ICC तक गया था, तो जब मैं विला से निकल के उबर में बैठा, जैसे ही मैं बैठा तो जो भैया मुझे ड्रॉप करने आ रहे थे वो बोले कि सुदेव करके बोला अरे थैंक यू, पहचान लिया आपने? बोले कि हाँ, इससे पहले एक बार मैंने आपको ड्रॉप किया था बहुत पहले मेट्रो स्टेशन से कहीं पे, और बट सुनता हूँ मैं आपको, मैं जानता हूँ आपको, सुनता हूँ करके। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो देखिए कोइंसिडेंट मैं मानता हूँ, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद ICC से मैं वापस आ रहा था और मैंने फिर से कैब बुक की, जैसे ही मैं कैब के अंदर बैठा उन्होंने बोला सुदेव, मैंने बोला अरे आप भी आते हैं, या आई लिसन टू यू। तो वो जो सर थे वो कर्नाटका से थे, मैंगलोर से, वो बता रहे थे कि आई लिसन टू यू, मैं बहुत पहले से तुम्हें सुन रहा हूँ करके। और जो दोपहर को मुझे छोड़ने जा रहे थे अली भाई, उनका नाम अली है, तो वो बता रहे थे कि जब रेडियो ऑलिव शुरू हुआ था तो मुझे गिफ्ट मिला था आपसे, मैं तब से सुन रहा हूँ आप लोगों को। और फिर जो शाम को मुझे मिले थे उनका नाम तीर्थ प्रसाद है, उन्होंने मेरे से, वो मैंगलोर से, वो मेरे से बोले कि मैं आई लिसन टू यू, आई लिसन टू ऑल ऑफ यू, आई नो सिमरन, लव यू 100 किलो और तनीषा, ये शी कम्स इन आफ्टरनून, आई नो आई लिसन टू यू। आई वॉज बिट कन्फ्यूज व्हेन आई सॉ योर नेम इट्स सुदेव, बट आई हैवंट सीन योर फेस। Nowadays I don't use Facebook or Instagram, so I don't know if you're the person or not. So I just, you know, tried my luck. I said Sudev, and you're like, oh yes, how do you know?
1: That is so sweet, na?
0: ये दोनों sweetness एक ही दिन में आ गई, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत ही खुश हो गया था। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा लोगों को, जो कुछ टाइम से मेरे मन में चल रही है, कल स्पेशली कल के एक इसके बाद, ये बात मैंने एक्चुअली सुनी थी तथास्तु करके एक स्टैंडअप में, स्टैंडअप स्पेशल है जाकिर खान का, उन्होंने एक बहुत बहुत ही प्यारी बात उसमें बोली थी। उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब ने बोला था कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, लोग उन्हें पसंद क्यों करते हैं, वो इसलिए नहीं पसंद करते कि वो आर्टिस्ट बहुत बढ़िया हैं, वो इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनमें से जो है गॉड की दी हुई एक जो छवि है, एक जो जादू है, वो उनके थ्रू गुजरती है। और ये चीज़ एकदम से ना, जब कल ये सब हुआ तो मेरे मन में ये मेरे जहन में बात आई कि सही बात है यार, ये लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, ये लोग मुझे इसलिए पसंद कर रहे हैं कि खुदा ने जो जादू भेजा है वो मेरे थ्रू इनके पास जा रहा है और उन्हें वो पसंद आया, वाह, मतलब इससे बड़ा इबादत या फिर इससे बड़ा सजदा क्या हो सकता है।
1: That's such a beautiful thought.
0: और वही, इसलिए थैंकफुल होते हुए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए मैं एक बात बताना चाहूंगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
1: yes,
0: तो कतर से मुझे क्या आदतें लगी हैं भाई, तनीषा तो जानती है आदत, ये आदत है परफ्यूमरी की,
1: परेशान है हम इस
0: भाई, इतना ज्यादा मुझे परफ्यूम का शौक लग गया है। मेरे टेबल में कुछ परफ्यूम्स मैंने ऑफिस में रखे हैं, इसके अलावा कुछ परफ्यूम्स जो हैं मेरे घर में रखे हुए हैं, और
1: कुछ की क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही है बाय द वे।
0: तनीषा जो है मुझे रोकती है बीच बीच में कि अब नहीं, इस बार बहुत हो चुका है अब नहीं लेना है And then I realized कि सही बात है यार, actually बहुत ज्यादा हो गए।
1: नहीं, ये realization कभी stuck नहीं होता है by the way।
0: देखो पूरा महीना दाल चावल में गुजर जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर महकते रहना चाहिए, ठीक है।
1: ये तो एक, वो एक perfume से भी आप महक सकते हो, you don't need 10,000 more।
0: ये पसंद आते हैं ना, क्या करें यार,
1: crazy।
0: और ये ऐसा रहता तो कतर ने ये आदत डलवाई, और सबसे बड़ी आदत जो डलवाई है वो है बखूर जलाने की। मैं इतना ज्यादा, पहले मैं जब इंडिया में था मैं धूप या फिर अगरबत्ती जला के रखता था रूम में, मगर जब से बखूर आया है तो अलग ही लेवल का एक वो हो गया। और यहाँ पे मुझे अच्छी क्वालिटी के बखूर मिलते हैं, लुबान बहुत बढ़िया मिलता है, लुबान भाई मतलब मैं तो दीवाना हो चुका हूँ। तो इन चीजों ने जो है मुझे कतर में आने के बाद बहुत इन्फ्लुएंस किया है, इन चीजों की आदत जो है मुझे कतर में आने के बाद लगी है। मगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए कतर में आने के बाद ऐसी कौन सी आदत है जो आपको लगी है जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे। 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे गाना सुनते हैं दगाबाज रे, अरहार फतेह अली खान साहब और श्रेया घोषाल की आवाज में, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सिंग फॉर यू मैन। जिन्हें पता है उन्हें पता है।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर ये एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
7: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

मत सहो फिर, क्यों इतना दर्द ले रहे हो? अननेसेसरी बर्डन अपने ऊपर उठा के रखोगे तो फिर भाई कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं है। ये लेसन मैंने सीखा था अपनी मम्मी से। बट एनीवे, कभी कभी कुछ बर्डन ना रखे तो फिर जिंदगी में स्वाद थोड़ी ना आएगा। फिलहाल यही बात करते हुए हम भी जरा निकलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, जाने का वक्त आ चुका है। थोड़ी देर में कशिश यहाँ पे पहुंच जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए। तो खुली बाहों से आप कशिश का स्वागत कीजिएगा, और जितना प्यार मुझे दिया है उतना प्यार भी आप कशिश को दीजिएगा, मैं तो कहता हूँ उसे ज्यादा ही दीजिएगा। अब देखिए, कशिश की बात कर दी हमने, यहाँ पे चांद देख लेना गाना आ गया है, तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं टाटा बाय बाय करता हूँ और याद दिलाता हूँ कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
4: This hour is brought to you by
5: Homesar Us. We complete your home.

एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स रोजा मूवी से रोजा जानीमान आपके रेडियो सेट्स पर जानीमान और आपकी कशिश जो है अब आ चुकी है वेलकम जी वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं एंड अपने दुखते हुए गले के साथ और बहती हुई नाक के साथ मैं आ गई हूँ आपसे बातचीत करने के लिए हाँ यार देखो ऐसे ना हर मतलब ऐसे हर दो तीन हफ्ते में मेरे को ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे मुझे फीवर आ जाता है या मेरा गला ख़राब हो जाता है ऑल दो मेरी जो है मतलब बोलने वाली जॉब है या मुझे पूरे टाइम बोलना होता है लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ कि मुझसे आइसक्रीम छूट जाए या ठंडा पानी छूट जाए नहीं मैं तो जो है सब करूँगी भले ही मुझे फिर भुगतना पड़ जाए लेकिन कोई बात नहीं आप सबकी दुआएं रहेंगी तो मैं ठीक रहूंगी तो जल्दी जल्दी से 3311063 पर मुझे दुआएं दे दीजिए और क्या प्लानिंग है आज के दिन की वो बता दीजिए कैसा जा रहा है अभी तक का दिन वो बता दीजिए आपके लिए अमेजिंग वाले गाने सो मैंने प्लेलिस्ट में लगा ही दिए सो ये भी इंजॉय करेंगे हम साथ साथ में थोड़ी सी देर में आगे टेम्परेचर क्या होने वाला है और मौसम का हाल क्या रहने वाला है वो आपको बताऊंगी फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर मेरी इस आवाज के साथ बेयर करते हुए ये गाने सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ख्वाब देखू गाने का नाम है मूवी का नाम एक दिन है इस गाने को एंजॉय करके फटाफट आओ फिर मौसम की बात करेंगे मैं हूँ आपकी कशिश मेरे साथ बनी रहो और कहती रहो जियो बिंदास

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास.
2: Time check.
3: Brought to you by
2: Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
4: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 10:12.
0: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ
5: आई रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स दिस इज रणवीर सिंह स्टे ट्यून्ड

0: उसके बाद एक ऑडियो नोट आया मेरे पास, सर ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, सर अपना नाम प्लीज मुझे बता दीजिए, और उन्होंने कहा है कि अपनी हेल्थ जल्दी से आप ठीक कर लीजिए, आइसक्रीम खाते रहिए और गाने बहुत ही अच्छे अच्छे सुना रही हैं आप। बस यही तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो मुझे मोटिवेट कर देती है। ओके सो बात कर लेते हैं मौसम की। वादे के अनुसार इस वक्त का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, एंड अगर आज के हाईएस्ट टेम्परेचर की हम बात करें तो वो रहने वाला है 40 डिग्री सेल्सियस, एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। यानी कंपेरेटिवली पिछले कुछ दिनों से आज माहौल थोड़ा सा कूल रहने वाला है, और बस इसी कूलनेस को बरकरार रखते हुए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इस गाने को एंजॉय कीजिए।
1: Cool song. Radio Olive Bird. Aane wala gana. Cool song of the hour. Song of the
2: hour. Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai?
1: Cool song.
0: Dil keh raha hai dil se. Adnan Sabi ji ki awaaz mein ye track enjoy karke aaiye. मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में आपकी कसुस के साथ। कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Life

टॉम हॉलैंड जिंदिया के लिए इस वक्त यही गाना गा रहे हैं. अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड एआई फोटोज तो आपने जरूर देखे होंगे जो वायरल हो रहे थे. 10 मिलियन से ज्यादा शेयर्स एंड व्यूज थे उस फोटो पे जिसमें जेंडिया और टॉम हॉलैंड जो है वो शादी कर रहे हैं. एंड काफी सारे स्पेकुलेशन ये भी थे कि जो रिश्तेदार हैं वो नाराज हो गए क्योंकि किसी को बुलाया नहीं गया. अब ये एआई वीडियो फोटो वायरल होने के बाद टॉम हॉलैंड ने जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जिससे ये लग रहा है कि हाँ भाई शादी की खबर पर जो है ठप्पा लग चुका है कि हाँ भाई शादी हो गई है इनकी. सो टॉम हॉलैंड ने ये कहा कि मजाक करते हुए इस पोस्ट पे ऐसे रिएक्ट किया कि नहीं, रिश्तेदार जो थे वो नाराज नहीं थे क्योंकि सारे के सारे वही थे. अब इस बात से लोग ये जो है कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने तो अग्री कर लिया कि हाँ हाँ शादी तो हो चुकी है. अब मैं जो है कुछ नहीं कहना चाहती इस पे, बाकी आप समझदार हो, आप समझो एंड आप इंटरनेट पे खुद जाके देख लो कि इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है. दोनों के वैसे जो टैटूज हैं वो भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं. जेंडिया ने जो है वो टी लिखवाया है एंड टॉम ने जो है वो जेड लिखवाया हुआ है. सो आई डोंट नो ये जो बातें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन अगर इनकी शादी हो चुकी है सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार. मतलब ये वो फेवरेट कपल होता है ना जो आप हमेशा से चाहते हो कि साथ में रहे, बस ये वही वाला कपल है. एंड इनकी वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी काफ़ी वायरल होती हैं जिसमें ये एकदम मिरर टाइप जो है एक्शंस कर रहे हैं. मतलब हाथ अगर एक का फेस पे जा रहा है तो दूसरे का भी फेस पे जा रहा है. दोनों के रिएक्शन सेम है, एक्शन सेम है. तो आई थिंक ये सब जो है सोलमेट्स के बीच में ही होता है. सो इसीलिए इन सोलमेट्स को अगर इनकी शादी हो गई है सो कांग्रेचुलेशंस. अच्छा तेरियां दुआवां लगियां. फिलहाल नीति और आयुष्मान की आवाज में तो मैं आज भी लड़ी साडी गली आजा गाना नौटंकी साला मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर. तेरियां दुआवां लगियां. एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जीओ बिंदास.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

0: इस गाने में ना मेरा बचपन समाया हुआ है. ये गाना सुन के मुझे ऐसा नॉस्टैल्जिया सा आ जाता है. मैं ऑटोमेटिकली अपने स्कूल के स्टेज पे पहुंच जाती हूँ जहां पर मैंने एक लहंगा पहना हुआ है, एक पायल पहनी हुई है और अपने बॉय कट बालों पर एक हेयर बैंड से दुपट्टा जो है वो अपने सर पे रखा हुआ है. आए हाय ओए होए. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड सच में यार वो दिन भी तो क्या दिन थे. मतलब पायल छनकाई पे जो मैंने ऐसे अपनी कमर हिलाई थी, आह हा, अब अगर मैं ऐसा कोशिश करूं मेरी कमर में पक्का दर्द हो जाएगा. खैर वो जो पायल की आवाज़ थी ना वो एक अलग सेटिस्फैक्शन देती थी. मैं जब भी स्कूल फंक्शन में वो पायल पहन के जाती थी एंड पूरा दिन, क्योंकि हमें उसी पायल के साथ जो है स्कूल में रहना पड़ता था एंड उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में या लंच के बाद जो है वो फंक्शंस हुआ करते थे. सो मैं पूरे दिन छन छन छन छन छन छन छन छन करती रहती थी एंड वो आदत अभी भी मुझे, अगर मैं अभी वो छन छन वाली बैंगल्स पहनती हूँ या पायल पहनती हूँ तो मैं पूरे दिन जानबूझ के छन छन छन छन करती रहती हूँ. लोगों को पता चलता रहता है कि मैं आ रही हूँ या मैं जा रही हूँ. एक अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन मिलता है उस साउंड से. लेकिन रिसर्च के हिसाब से ऐसी कौन कौन से साउंड्स हैं जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये भी मैं आपके लिए ढूंढ कर ले आई हूँ. बिल्कुल, तो हर रोज की तरह जैसे हम इस सेगमेंट में बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, बिकॉज इस जालिम दुनिया में स्ट्रेस की तो देखो हमें बिल्कुल कमी नहीं हो रही है. So the most satisfying sounds in the world according to research is number one पे rain on roof or windows, यानी वो जो बारिश की बूंदों की आवाज़ हमारी खिड़की पर और हमारी छत पर आती है ना वो number one पर है अगर satisfying sounds की हम बात करें. उसके बाद ocean waves की अगर हम बात करें, यानी हम सागर किनारे बैठ कर जो सुनते हैं वो आवाज़ें. उसके बाद cat की म्याऊ म्याऊ की आवाज़ जो है वो तीसरे नंबर पर है. उसके बाद फ्रेश स्नो पर चलने की आवाज़. देखो यार इससे ना मैं थोड़ा सा रापता नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि मुझे तो जितना मैंने स्नो आज तक देखी नहीं है ना उस पर मैं चली हूँ, लेकिन जहाँ तक ये वाली साउंड मैंने सुनी है वो मैंने मूवीज़ में सुनी है एंड काफ़ी क्रीपी लगती है यार. ऐसा लगता है कि कोई तो आ रहा है अब. ओके आगे बात कर लेते हैं. फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर जो है वो है आग के जलने की आवाज़. उसके बाद कोल्ड ड्रिंक को पोर करने की आवाज़ और फिर आती है मैकेनिकल कीबोर्ड पे क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक यानी टाइप करने की आवाज़. एंड ये बात तो सही है यार, ये मेरी फेवरेट आवाज़ है और मैंने ना एक स्पेशल फिजिट टॉय भी ले रखा है जो ये आवाज़ करता है. सो अगर ऐसे ही और इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट जानने हैं तो आपको स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा आपकी कशिश के साथ. ऐसे फ्रेश फ्रेश चीज़ें मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए जो आपको बताएंगे कि स्ट्रेस को दूर कैसे रखें. फिलहाल सबसे प्रायोरिटी पे तो गाने सुनना है. सो ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. ये
0: गाना अरिजीत सिंह की आवाज में भूत बंगला मूवी से ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. निकिता गांधी की भी आवाज है इस गाने में, तू ही दिसदा गाने का नाम है. सो एंजॉय करके आओ. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में ऑलिव अपडेट्स के उस बार. स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए जियो.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करो या ना करो, सुनिधि चौहान का लाइव इन कॉन्सर्ट एक बार जरूर से देख लेना। जब वो ये गाना परफॉर्म करती है ना फिजा मूवी से, तब ना पूरा पूरा क्राउड एक साथ एक स्टेप करने लग जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई। अब देखिए यार, बीइंग अ सेमी वेजिटेरियन का मतलब ये होता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बस मैं हूँ। सेमी वेजिटेरियन का मतलब होता है वो इंसान जो नॉनवेज शौक से नहीं खाता है एंड कभी कभार ग्रेवी खा लेता है या बिरयानी के चावल खा लेता है या एक आध पीस अगर कोई गलती से खिला दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वाले होते हैं सेमी वेजिटेरियन लोग, जो कि मैं हूँ। लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत यह है कि मैं पनीर नहीं खाती, मैं बटर नहीं खाती, मैं घी नहीं खाती, मैं चीज़ नहीं खाती। लैक्टोस इंटॉलरेंट नहीं हूँ क्योंकि मुझे कड़क चाय, आइसक्रीम, चॉकलेट सब बहुत पसंद है। सो मेरा जो मामला है वो थोड़ा सा अजीब चलता है। अब मैं जो है जितने भी वेजिटेरियंस हैं, मैं उनके बिहाफ पे ये कहना चाहती हूँ कि क्यों सिर्फ पनीर है हमारे पास, सिर्फ पनीर। आप एक बार किसी रेस्टोरेंट में जाइए एंड उसका मेन्यू पढ़िए एंड वहां जाके आप देख रहे हैं कि यार यहाँ तो पनीर पनीर पनीर के 18 तरीके के डिशेज हैं, लेकिन वेज में उसके अलावा कुछ नहीं। मैक्सिमम मंचूरियन हो जाता है या फिर एक हरा भरा कबाब या गोभी मिक्स वेज, ये मिल जाएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो आपको मैं आज एक टास्क देना चाह रही हूँ, आपको मुझे 3311063 पर मैसेज करके ये बताना है ये पनीर की कितनी डिशेज आपको पता है, सिंपल, या फिर क्या कुछ हो सकता है पनीर के अलावा जो बहुत टेस्टी होता है। अगर मुझे मिल पाया तो एक रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी मैं बिना पनीर के।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइव मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड पनीर की जो है हम पर्दाफाश कर रहे थे हम पनीर का कि यार देखिए पनीर एक तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कॉटेज चीज इसे कहा जाता है. एंड अगर वेजिटेरियन खाने की बात आती है तो पनीर को कोई भूल ही नहीं पाता है. मतलब अगर मैं पनीर की बात करूँ तो पनीर जो है वेज खाने का शाहरुख खान है कि अगर बॉलीवुड की बात होगी तो शाहरुख खान की बात होगी ही होगी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर पनीर की बात हो रही है यानी शाहरुख खान की बात हो रही है तुम अमिताभ बच्चन को भूल जाओगे, तुम सलमान खान को भूल जाओगे, आमिर खान को भूल जाओगे, सिद्धार्थ मल्होत्रा को भूल जाओगे, वेदांत रैना को भूल जाओगे. ऐसा नहीं होता ना यार. मतलब करण जौहर की मूवीज के अलावा भी तो कितनी अच्छी अच्छी मूवीज हैं, इम्तियाज अली को देख लो. तो बस मैंने ना थोड़ी देर पहले आप लोगों से यही पूछा था कि यार एक बात बताओ कि आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में एंड वहां जाकर आप पनीर जो है आपको वेज खाना खाना है तो आपको पनीर के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो क्या आपको याद हुए कि पनीर के जो 1760 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं क्या वो ऑप्शंस आपको याद हुए हैं. सो एक लिसनर है जिन्होंने बड़े ही प्यार से बहुत देर से वो टाइप कर रही थी, एंड मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझसे इतनी शिकायत करना चाहती है. लेकिन परवेज अहमद जी ने जो है एक पूरा मेन्यू मुझे लिख के दिया है. सो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जो है इरशाद फरमाना चाहूँगी. सो शुरू कुछ ऐसे करते हैं कि पनीर टिक्का, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, पालक पनीर, मटर पनीर, पनीर मलाई कोफ्ता, पनीर भुर्जी, हांडी पनीर, पनीर चिली, पनीर पकोड़ा, पनीर पराठा, पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याज़ा, तवा पनीर. मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं पनीर खाती भी नहीं हूँ फिर भी. मेथी मलाई पनीर, अचारी पनीर, पनीर 65, पनीर रोल, पनीर भुर्जी, पनीर कुलचा, पनीर ऑमलेट, मलाई पनीर टिक्का, हरियाली पनीर टिक्का. मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जो पनीर होती है इसको अलग अलग डिशेस के नाम से क्यों हम जानते हैं. मतलब कुकर में बना हुआ पनीर अलग है, कढ़ाई में बना हुआ अलग है, हांडी में बना हुआ अलग है, क्यों भाई? कैसे बन रहा है उससे तो अलग डिपेंड होना चाहिए ना. एंड एक पनीर है पनीर पसंदा. यार देखिए पनीर पसंदा उन लोगों के लिए पनीर पसंदा है जिनको पनीर पसंद है, मुझ जैसे लोगों के लिए तो पनीर ना पसंदा ही है. सो थैंक यू सो मच परवेज जी, बहुत ही अच्छा लगा आपकी पनीर की डेलिकसीज जो है वो पढ़कर. एंड यूसुफ खान जी ने भी लिखा है, कशिश मुझे पनीर पसंद नहीं है, हम लोग बहुत ही कम खाते हैं. देखिए पनीर तो मुझे भी पसंद नहीं है एंड मैं तो खाती ही नहीं हूँ. एंड आज मोहम्मद अरमान जी जो पचमढ़ी से हैं उन्होंने मुझसे पूछा है कि हाउ आर यू, आपका आपका फूड बहुत पसंद है क्या? अच्छा मुझे फूड बहुत पसंद है आप ऐसा कह रहे हैं. नहीं नहीं दीदी, देखिए अगर इस दुनिया में फूडी लोगों का कोई कंपटीशन हो तो मैं सबसे आखिरी में आऊँगी. मुझे खाना खाना पसंद है लेकिन मैं अपना फेवरेट खाना रिपीट पे खाती हूँ. अब जो भैया हमारे यहाँ नाश्ता लेके आते हैं उन्हें याद हो गया है कि ये मैडम तो यही चीज़ मंगाएगी. सो पनीर की कौन सी ऐसी डिश है जो आपको बहुत पसंद है 3311063 पर मैसेज करके आप अभी भी मुझे बता सकते हैं. एक अमेजिंग फैक्ट पनीर के बारे में मैं लेकर आऊँगी एंड पनीर के बिना बनने वाली डिशेस भी उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि आगे बात कर लें. लेकिन उससे पहले कोई मीठी मीठी सी गर्ल जो है वो कर लेते हैं, यानी मीठी मीठी सी बात कर लेते हैं हम हमारे इस गाने के साथ. गाने का नाम है गर्ल मीठी मीठी, तो जी रहना की आवाज़ में आयशा मूवी का ये ट्रैक है. सो अपनी कशिश के साथ आयशा मूवी का ये ट्रैक एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

विशाल मिश्रा की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आलू पर। ओए होए लेकर आ गई हूँ मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है ले आई हूँ। एंड वादे के अनुसार जैसे मैंने आपसे कहा था कि पनीर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि आज हम पनीर का पर्दाफाश कर रहे हैं, पनीर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो एंशिएंट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो पनीर बनाना जो था उसे बैन किया गया था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं माना जाता था कि दूध को जो है आप इस तरीके से प्रोसेस करें। लेकिन बाद में टाइम के साथ साथ जो है इसको नॉर्मलाइज किया गया। और अगर मैं पनीर के नाम की बात करूं तो ये जो है पोर्चुगीज ट्रेडर्स जो है इसे कैलकटा लेकर आए थे, एंड वहां से 17th सेंचुरी में इसे इंडिया में एंट्री मिली, एंड उसके बाद से इसे पनीर कहा गया। पनीर जो है एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है चीज। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में कॉटेज चीज कहा जाता है पनीर को, एंड काफ़ी सारी ऐसी ही चीज़ें हैं, बेनिफिट्स हैं। अगर आपने ध्वनि भानुशाली जो एक सिंगर हैं उनका फिटनेस टूर जो है वो फॉलो किया है, सो वो हमेशा ही कहती है कि उन्होंने अपनी डाइट में सिर्फ कच्चा पनीर ऐड किया था, वो सिर्फ कच्चा पनीर खाती थी, एंड उसके बाद उनका जो फैट लॉस है वो ज़्यादा बढ़ गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हेल्थ की अगर हम बात करें तो पनीर अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन होता है, एंड वेजिटेरियंस के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो तो पनीर ही है। अब देखिए, जहाँ नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो सब्जी बना के खाया जाता है पनीर को, लेकिन अगर मैं एक अदर साइड की बात करूँ, बंगाल साइड की बात करूँ, तो वहाँ पर जो है पनीर को एज अ स्वीट कंज्यूम किया जाता है, एंड काफ़ी सारी मीठी चीज़ें जो है वो पनीर से बनती है। सो पनीर अब जो है डिज़र्ट मार्केट में भी एंट्री मार चुका है। सो पनीर से रिलेटेड अगर और कोई आपके पास फैक्ट है तो 3311063 पर मुझे आप मैसेज कर दीजिए। फिलहाल वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ है, एंड साजिद जी ने जो है लिखा है कि उनको पनीर बिल्कुल नहीं पसंद, उनको पनीर देखना भी पसंद नहीं है। ओके, आई कैन रिलेट विद इट। उसके बाद यूसुफ जी से मेरी बात जो है वो जारी है। मोहम्मद अरमान जी जो है मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि मैं कतर से हूँ या मैं बाहर से हूँ। ऑब्वियसली मैं कतर से नहीं हूँ, कतर आए हुए मुझे जो है अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, लेकिन कतर ने ऐसा फीलिंग दिला चुका है कि जैसे मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर रहती हूँ। सो फ्रेश खाना खाते हुए और फ्रेश फ्रेश बातें करते हुए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो भी हम एंजॉय कर लेते हैं।

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर
1: ये गाना
2: करेंटली मेरा फेवरेट बना हुआ गाना बेरन आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। इसे एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

यूं तो हीरो पंडित 2 मुझे खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन अगर उसे पसंद करने का कोई कारण है तो वो ये गाना है। यार रहमान जी का ये गाना आपने एंजॉय किया। और मैं हूं आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वक्त हो गया है आपको एक प्यारी सी क्यूट सी मूवी रिकमेंड करने का। तो देखिए यार, अगर आप OTT पे वही क्लीशे चीजें देख देख के बोर हो गए हैं एंड आपने पूरा इंटरनेट छान लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या देखा जाए, क्योंकि आपको अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, मतलब 3 घंटे की मूवी देखी जाए या सीरीज शुरू कर ली जाए फिर रियलाइज हो कि ये मूवी अच्छी ही नहीं है, तो फिर क्या बात है ना। बस इसीलिए चुन चुन के आपके लिए अच्छा कंटेंट मैं लेकर आई हूँ। आज मैं जो है एक बॉलीवुड क्लासिक लेकर आई हूँ, 1976 की ये मूवी है। मूवी का नाम है छोटी सी बात। यस, छोटी सी बात अगर आपने देखी है सो आप बॉलीवुड के उन कल्ट फैंस में से एक हैं। इस मूवी में एक बहुत ही प्यारा सा गाना था, जानी मन तेरे दो नयन, एंड दैट सॉन्ग ओ माय गॉड, वो गाना अभी तक मेरी प्लेलिस्ट में है। एंड मैं लिटरली उस गाने को सुन के ना इतना क्यूट फील करती हूँ, जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं वो गाना सुनती हूँ। एंड आप भी एक बार जरूर से सुन कर देखिएगा। फिलहाल मूवी की बातचीत पे वापस आते हैं। कोर प्लॉट जो है वो एक इंसान की लाइफ पर है जो बस एक लड़की को प्यार करता है एंड उसे जो है बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किस तरीके से उसका जो एक कलीग है जिसका रोल असरानी जी ने निभाया है वो किस तरीके से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इट्स अ प्रीटी यू नो बेसिक प्लॉट जो हमें आजकल देखने को मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी बहुत रिलेटेबल लगती है एंड बहुत ही ज़्यादा इसे फील गुड फैक्टर है इस मूवी में आपको। अगर मैं मेन लीड्स में बात करूँ तो अमोल पालेकर इस मूवी में मिल जाएंगे, अशोक कुमार, असरानी जी और विद्या सिन्हा जो है मेन लीड में आपको मिलेंगे, यानी एक फुल ऑन पैक्ड अमेजिंग अगर मैं बात करूँ कास्ट है। एंड अर्बन लैंडस्केप के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो बहुत इंडियन नॉर्मल बेसिक जैसे लेट 80s में हुआ करते थे उस टाइप का एक ओवरव्यू है मूवी का। सो ऑल एंड ऑल मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं इस मूवी की तारीफ करने के लिए, लेकिन आप जाकर ज़रूर से देखिए मूवी एंड YouTube पे भी मिल जाएगी, मैंने YouTube पे ही देखी थी। अब कैसी लगी 3311063 पर आकर ज़रूर से बताइएगा। अगर आपके पास कोई मूवी रिकमेंडेशन है जो आप चाहते हैं कि कशिश इस मूवी के बारे में भी सबको बताओ सो वो भी मैं बताऊँगी, 3311063 पर आकर जल्दी से मुझे बता दीजिए। ऑल एंड ऑल छोटी सी बात मूवी जो है इसको मैं देना चाहूँगी 5 स्टार। फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो।

0: Trek. Brought to you by Nanadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 12:13, दैट मींस 12:13।
2: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
2: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hello, I'm Neena Gupta.
6: सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
7: ऑलिव सुनो।

देखिए कोई भी एक रैंडम लड़की आप उठाइए एंड उस लड़की के बैकग्राउंड में जो है ये गाना लगा दीजिए, आप उससे रिलेट कर जाएंगे बिकॉज दिस इज अ सॉन्ग जो रियली हर लड़की के ऊपर चला जाता है, हर लड़की की वाइब से मैच कर जाता है, हर

देखिए मैं तो अगस्त में पैदा हुई हूँ, सो मैं तो वैसे ही बॉर्न मेन कैरेक्टर हूँ। अगस्त वालों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगस्त में जो पैदा हुए लोग होते हैं ना, वो हमेशा मेन कैरेक्टर वाइब के साथ रहते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि पूरे टाइम सनन सनन हवा चल रही है, उनके बाल उड़ रहे हैं और हर चीज़ उनके आसपास ही घूम रही है, यानी वो मेन कैरेक्टर है एंड बस लाइफ इज हैपनिंग। ये आप जब मुझसे बात करते होंगे तो आपको रियलाइज होता होगा कि हाँ यार ये बात तो सही है, ये लड़की अपने अलावा किसी चीज़ की बात ही नहीं करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अगस्त में पैदा हुई हूँ लेकिन सेल्फिश नहीं हूँ, मैं आप लोगों के बारे में भी बहुत सोचती हूँ, इसीलिए

0: समझ आ रहा है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ डेनिम स्कर्ट के साथ उसको थोड़ा सा एक्सेंट देकर बहुत ज़्यादा पेयर किया जा रहा है ओवर साइज चेक शर्ट्स को। तो अगर आपके भाई की, आपके हस्बैंड की, आपके डैड की किसी की भी पुरानी चेक शर्ट है उसे जल्दी से उठा लो एंड फटाफट इंस्टाग्राम पे जाओ, प्रिंटरेस्ट पे जाओ, बहुत सारे अमेजिंग आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे और उसे पेयर करो, बिकॉज ये जो समर हीट है इसे सिर्फ एक अच्छी चेक शर्ट जो है वही बीट कर सकती है और आपको एकदम कूल कूल वाला फील देगी।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग TNC अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

इम्तियाज अली की मूवीज में। ये तो नादान परिंदा है ना, ये कभी घर आ ही नहीं पाता। अभी रीसेंट मूवी मैं वापस आऊंगा का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मतलब लोग रोते हुए बाहर निकल रहे हैं थिएटर से। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मुझे ना एडिक्शन हो गया मेरे फोन का। अक्सर जो लोग मेरे साथ हैंग आउट करते हैं वो मुझे कंप्लेन करते हैं कि यार कशिश तुम पूरे टाइम अपना फोन स्क्रॉल करती रहती हो, कुछ ना कुछ देखती रहती हो, एंड दिस इज नॉट गुड। एंड ये मुझे भी रियलाइज होता है लेकिन मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। सो बस इस एडिक्शन से बचने के लिए जेंजीज अब क्या कर रहे हैं, ये एक फेक फोन जो है, एक डमी फोन जो है वो अपने साथ लेकर घूमते हैं। एंड इस फोन में या तो सिर्फ आप सामने वाले को टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। जो पुराने जमाने में फ्लिप वाले फोन होते थे ना, वो वाले फोन जो है वापस आ गए हैं, बारबी फोन आ गया है। एंड ये सब यूज हो रहा है ताकि आप अपने सोशल मीडिया का जो इंटरेक्शन है उसे कम कर सके, स्क्रोलिंग को, डूम स्क्रोलिंग को जो है कम किया जा सके। अब आप बताइए आप अपने फोन की इस एडिक्शन को किस तरीके से कम कर रहे हैं। 3311063 पर फिलहाल लाइफ मस्त है, लाइफ इज क्रेजी गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वेक अप सिड मूवी से। इसे एंजॉय कीजिए, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में।

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: कोक स्टूडियो का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ऑफ अस। मैं हूँ आपकी कशिश और मेरे साथ आप एंजॉय कर रहे थे शो लाइफ मस्त है। लेकिन देखिए हर अच्छी चीज को जाना पड़ता है, बस इसीलिए मैं जा रही हूँ, कल लौट के वापस आऊंगी। बहुत सारी फन बातें जो है हम जारी रखेंगे, सो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, एंड हाइड्रेशन इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए भी और आपके लिए भी, तो पानी पीजिए एंड सनस्क्रीन भी लगाइए। बाकी 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप जब चाहे तब हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बातचीत जो है वो जारी रख सकते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर
2: ये गाना।
0: फिलहाल तड़पना जुदा जुदा गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास, टाटा बाय।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास।

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू MasterCard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back to back gaane.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रेवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: तनिषा
1: प्यार हो जाए तो उस फीलिंग को एंजॉय करो यार, इट्स सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आगे जी आपके साथ ऑल रिचार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान। क्या हाल चाल है वेंसडे का दिन जून 17th, कैसा ट्रीट कर रहा है आपको? हाउ इज द वाइब ऑफ दिस वेंसडे? क्या चल रहा है ऑफिस में? सब ठीक है? खाना शाना खा लिया कि नहीं बताओ मुझे फटाफट से।
2: निकम्मा बेफिजूल,
1: सही बात है,
2: मगर फिर भी
1: सही बात है।

इस ड्रामा की कॉपी की जा रही है इंडियन सोप्स में. सुंदर गाना रहा था आपकी आवाज में. हाँ जी, ये सब अमेजिंग गाने आपके लिए लाइंड अप हैं इस घंटे में और ढेर सारी बातें लेकर तो मैं ऑब्वियसली आ गई हूँ. पर उससे पहले मैसेज कर दो 3311-1063 पर और बताओ अपने हाल चाल और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: डॉक्टर ऑन एयर ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
3: डू यू नो द नंबर वन रीजन व्हाई एडल्ट्स लूज देयर टीथ इज नॉट बिकॉज ऑफ कैविटीज, इट इज बिकॉज ऑफ गम डिजीज, आल्सो कॉल्ड एज पीरियोडोंटाइटिस। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद बासिल, आई एम ए पीरियोडोंटिस्ट फ्रॉम नसीम मेडिकल सेंटर। नाउ दिस स्टार्ची एंड शुगरी फूड डेब्रिस दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन योर माउथ आफ्टर ईच ऑफ आवर मील्स इंटरैक्ट्स विद सर्टेन बैक्टीरिया एंड फॉर्म्स अ सॉफ्ट कोटिंग ऑन द टीथ कॉल्ड एज प्लैक, व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय प्रॉपर टूथ ब्रशिंग। But if left behind, it hardens to form something called as calculus or tartar, which can only be removed by professional cleaning. When untreated, it irritates the gum tissues, leading to inflammation of the gums. This inflammation then spreads to the bone supporting your teeth, causing bone loss and ultimately loss of your teeth. So make sure you visit your dentist before you go from a beautiful smile to a toothless smile.
2: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।

0: तनिषा
1: गुस्ताख इश्क से उलझुल इश्क, ब्यूटीफुल गाना और बहुत सुंदर मूवी भी है बाय द वे। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ, ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं अब। और एक चीज आज रियलाइज करी है कि नो मैटर हाउ पॉलिश्ड अ पर्सन लुक्स, यू नो जो उनकी इनर ब्यूटी होती है ना वही मैटर करती है, लाइक व्हाट आर देयर थॉट्स, हाउ दे ट्रीट पीपल, हाउ

0: life, be it your friend, be it your colleague, anybody, okay? And sending cool song of the hour. बहुत पसंद है मुझे ये गाना. चल दिए तुम कहाँ पर? Stay tuned on Jio Vindas.
1: Cool song.
0: Radio Olive पर आने वाला गाना cool song of the hour.
2: क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है.
1: Cool song.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: In association with
7: Doha Bank,
6: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: दनिशा
1: की आवाज में लाइफ इन अ मेट्रो से अलविदा ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। दनिशा के साथ सुना आपने, ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और अलविदा कहेंगे सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अपने सेकेंड सेमेस्टर को, क्योंकि रिजल्ट आ गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने अनाउंस कर दिए हैं स्केड्यूल फॉर सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट्स फॉर 2025-2026 एकेडमिक ईयर। रिजल्ट्स आर बीइंग मेड अवेलेबल थ्रू द मारिफ पब्लिक सर्विस पोर्टल। ग्रेड वन एंड ग्रेड टू प्राइमरी स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देयर रिजल्ट्स फ्रॉम जून 16, दैट इज सिंस यस्टरडे दे कैन। एंड ग्रेड थ्री प्राइमरी टू ग्रेड 11 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू व्यू देयर रिजल्ट्स फ्रॉम जून 18th, that is tomorrow. ठीक है, सो गुड लक रख लो मेरी तरफ से। एंड सबका रिजल्ट एकदम बढ़िया आए, एकदम खुशी खुशी आप उस रिजल्ट को देखकर सेलिब्रेशन करें एंड एवरीथिंग शुड बी गुड। एंड डू शेयर विद अस, ओके, वो सेलिब्रेशन। 3311106 3 पर सेंडिंग रहा था आपकी आवाज में सजदा फ्रॉम द मूवी माय नेम इज खान। स्टे ट्यून्ड एंड श्री बिंदास।

0: Tanisha.
1: Beautiful track from the movie Bawal, Dil Se Dil Tak. Tanisha ke saath suna aapne Radio Olive 106.3 FM par. Olive Retard chal raha hai yahan par. Aur Qatar ne officially launch kar diya hai naya aur enhanced version of Hukumi app. Yes, it's the country's unified digital government services platform. और जिस तेजी से यू नो दुनिया बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी की तरफ, AI एंड everything, it is taking over. कतर उसमें बिल्कुल ऐसे हैंड इन हैंड चल रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाई दे हैव कम अप विद दिस सिंगल गेटवे फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर सिटीजन रेसिडेंट्स बिजनेसेस एंड विजिटर्स. और इसमें एक मेजर फीचर जो है ऐड किया गया है दैट इज़ कॉल्ड लाइफ मोमेंट्स. यस, जिसमें जो भी आपकी रियल लाइफ इवेंट्स रिलेटेड सर्विसेज होंगी ना वो हैं, जैसे कि मैरिजेस हो गई, रिटायरमेंट, सोशल वेलफेयर और जो भी अदर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स आर देयर इन योर लाइव्स, वो आप लाइफ मोमेंट में जाकर उसके सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं. And the revamped platform is the first outcome of Qatar's Digital Factory Initiative. And it aims to create a seamless digital government experience. Cheeze bahut hassle-free ho jati hai, feasible ho jati hai hamare liye. When, you know, everything comes online. Hame queues mein nahi khada hona padta. Hame waqt nikal ke kahin jana nahi padta. Wherever we are, it's on our fingertips. So that is really cool. Check out kijiyega. Aur bahut sare amazing nai features bhi aaye hain us pe. Dekhiye unhe bhi. And if you need, you know, any kind of services, badiya, jahan ho, wahan se apply kar do uske liye. Sending fresh song of the hour. Stay tuned, Andrew Bindas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Football boundaries nahi janta, aur Qatar ka culture koi limits nahi janta. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.
0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब वक्त हो गया है असर की अजान का.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: In association with
4: Doha Bank,
3: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.
5: मधुर नैनी नार अलबे

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
4: अरमान मलिक।
3: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: अब लेर लगा और हो जा रिचार्ज।
8: Olive Recharge.
9: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindas.
10: Olive Recharge.
11: This hour is brought to you by
12: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
13: In association with
14: Doha Bank,
13: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट करना है, लुलू पर एक रियाल मिनिमम आपने स्पेंड करना है और रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं। दैट्स ऑल। दिस ऑफर इज वैलिड टिल 30th June ओनली, सो फटाफट से जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड एंड अपनी शॉपिंग को और भी मजेदार बनाइए। और सुन रही है रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: Tanisha.
1: Toshi Sabri ke awaaz mein Raaz the Mystery se Mahi. Beautiful track only on Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath only recharge chal rahe hain yahan par. And have you ever heard about the fruit theory? So it is very interesting. जैसे कि एक फ्रूट जो किसी ने कहीं पर लगाया उसका सीड, ठीक है, किसी ने उसका ख्याल रखा, एंड यू नो व्हेन दैट फ्रूट लाइक दैट ट्री केम टू द फ्रूशन एंड फ्रूट आया, फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर कर आप तक पहुँचा, आपने खाया उसे. दैट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर मेरी जान कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में आर डेस्टाइंड फॉर यू ना, वो मे बी थोड़ा ज़्यादा वक्त लेंगी, पर आप तक पहुँचने से उसे कोई नहीं रोक सकता. अगर एक फ्रूट को कोई नहीं रोक सका, सो ऑल दोज बिग एंड अमेजिंग थिंग्स यू अस्पायर इन योर लाइफ एंड इट इज़ मेंट फॉर यू, उसे भी कोई नहीं रोक सकता है. एग्जैक्टली, एकदम सही टाइम पर ये गाना आया है. सो मे बी अगर अभी तक यू नो वट एवर सीड यू हैव बीन प्लांटिंग हैज नॉट कम टू फ्रूशन, थोड़ा सा इंतजार करो, आएगा फ्रूट, जरूर मिलेगा आपको. अगर वो आपकी डेस्टिनी में है, लिखा हुआ है कि आप तक पहुंचना है उसने, तो कोई नहीं रोक सकता यार, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है और अपने ऊपर बिलीफ. सेंडिंग अमेजिंग ट्रैक नीरज श्रीधर की आवाज में, तो मिले मूवी से टाइटल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड, रियो बिंदास मेरी जान.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को कीजिए सर्टिफाइड, बनिए सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: लगा और हो जा रिचार्ज, ऑलिव रिचार्ज,
2: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
5: In association with
6: Doha Bank,
5: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: तनिषा
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और मुझे अभी Peter का message आया है and he is asking क्या हम अपना job title जो है वो QID पर change कर सकते हैं? Yes, you can do it. आपको एक you know professional या फिर job title change request submit करनी पड़ेगी through the appropriate government channel और वो आपके employer के through होगी. ठीक है एंड ये जो जॉब टाइटल है इट शुड मैच योर एक्चुअल रोल एंड क्वालिफिकेशंस आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करने हैं एंड वंस द मिनिस्ट्री अपडेट्स द प्रोफेशन इन द सिस्टम एक न्यू क्यूआईडी इशू हो सकती है रिफ्लेक्टिंग द अपडेटेड प्रोफेशन सो या इट कैन बी डन बाकी की डिटेल्स के लिए यू शुड गो एंड विजिट द मिनिस्ट्रीज वेबसाइट सो दैट आपको प्रॉपर प्रोसेसिंग पता चल जाए या फिर आप अपने ऑफिस में पूछ सकते हैं दे कैन हेल्प यू विद दैट बाकी यस इट इज पॉसिबल पीटर एंड सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे स्टे ट्यून्ड कॉकटेल टू मूवी से जब तलक जियो बिंदास

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

तनिषा एजेंट विनोद से नंदनी सरकार की आवाज में दिल मेरा मुफ्त का ओहो हो यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहे हैं अब लेम जैम्स का आज का सवाल एकदम मतलब कतई लेम टाइप्स का हो गया ये तो लेवल पार हो चुका है सो द क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन सा बिस्किट है जो हम मुंह पे लगा सकते हैं अडवाइस नहीं करूंगी पर लेम जैम्स है यार लेम सवाल है लेम जवाब दो मुझे इसका ठीक है ऐसा कौन सा बिस्किट है जो हम मुंह पे लगा सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके मुझे बताइए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर ऐसा कौन सा बिस्किट है जो हम मुंह पे लगा सकते हैं फहीम अब्दुल्ला की आवाज में चांद मेरा दिल से एतबार स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

0: के और सोनल चौहान की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक, कैसे बताऊं तुझे, मुश्किल होता है पर यार एक बार बात दिल से जब तक नहीं निकालोगे पता नहीं चलेगा ना सामने वाला क्या बोलने वाला है, सो यू गॉट डू इट यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ ऑल ओवर चार्ट चल रहे हैं पर लेम जैम्स का आज का जो लेम सवाल है आई थिंक कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज की ऐसा कौन सा बिस्किट है जो आप मुंह पर भी लगा सकते हैं, फॉर दैट मैटर हाथ पर भी लगा सकते हैं, आई मीन इट्स योर चॉइस, यू शुडंट, आई वोंट एडवाइस, बट स्टिल इट इज लेम। सो सोचो जरा कि ऐसा कौन सा बिस्किट हो सकता है जो कि मुंह पर लगाया जा सकता है। 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4441063 पर। यहाँ पे मुझे मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज आया हुआ है, वो जवाब तो देखो उन्होंने सही दे दिया जो कि मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, पर वो कह रहे हैं कि यस इट इज़ डिफिकल्ट। तो ज़रा सोचो, एक और मौका दे रही हूँ वरना आकर तो बता ही दूंगी जी। भेज रही हूँ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू, स्टे ट्यून एंड रेडियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
3: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर, मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
5: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज। ओनली रिचार्ज।
0: ओनली रिचार्ज। रेडियो ओनली 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: ओनली रिचार्ज।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
8: In association with
0: Doha Bank,
8: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनिषा
1: अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में बहुत ही सुंदर गाना यस बॉस मूवी से चांद तारे तोड़ लाओ आसान है क्या बस ये कह देते हैं कैंडी फ्लॉस वादे इन पे भरोसा नहीं करना होता है समझ रहे हो बात को यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर और लेम जैम्स का आज का सवाल था कि ऐसा कौन सा बिस्किट है जो आप मुंह पे भी लगा सकते हो हाथ पे भी लगा सकते हो इट्स टोटली अप टू यू इट इज नॉट एडवाइजेबल दो बट यू नो फ्री विल ऑब्वियसली और पहले तो किसी को नहीं आ पा रहा था फिर मोहम्मद यूसुफ खान साहब ने जो है शुरुआत करी सही जवाब की और फिर जो लाइनें लगी है ओहो करेक्ट आंसर दे दिया भाई सब ने सो आई हैव गॉट आंसर्स हियर फ्रॉम ऑब्वियसली मोहम्मद यूसुफ खान साहब राजी नायर जी देन देर इज जरीन देर इज साजिद देर इज सेवन इनका नाम सेवन है तो नाम लिख दिया करो दोस्तों नाम पता होना चाहिए ना कौन हमें जवाब दे रहा है ऐसे थोड़ी होता है और साथ में सतीश जी का मैसेज आया है रिशन का मैसेज आया है शामो ऑल दीज पीपल हैव गिवन करेक्ट आंसर यस द आंसर इज क्रीम बिस्किट गुस्सा आ रहा होगा समझ सकती हूँ मैं बट यार मैंने पहले ही बोला था इट इज लेम तो अभी गुस्सा जायज नहीं है यू साइन अप फॉर दिस राइट कोई बात नहीं गुस्सा शांत करने के लिए एक बढ़िया गाना भेज रही हूँ जिसपे हम दोनों मिलकर वाइब करेंगे स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज. ओलिव रिचार्ज.
0: ओलिव रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
5: ओलिव रिचार्ज.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: In association with
9: Doha Bank,
8: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: रेडियो
0: 106.3
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: Tanisha.
1: ब्यूटीफुल फ्यूजन ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिशा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान. मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे और थर्सडे है जी, खुशियां ही खुशियां. मैं तो नींद के इंतजार में हूँ, बाय गॉड. मतलब ऐसे हर बार मैं यही सोचती हूँ कि यू नो वीकेंड आ गया है, फ्राइडे तो मैं सुबह देर से ही उठूंगी, पर सुबह 6 बजे जो है टच नींद खुल जाती है बिना किसी अलार्म के. कमाल ही है मेरी भी. बट स्टिल उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि इस फ्राइडे सो जाऊंगी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट अभी कल थर्सडे है, कल मिलेंगे, कल ढेर सारी बातें करनी है. आपने अपना ढेर सारा ख्याल भी रखना है क्योंकि आप इंपॉर्टेंट है मेरी जान. ऑल्सो इफ यू हैवंट फॉलोड अस ऑन सोशल मीडिया येट, क्या कर रहे हो यार, कितनी बार बताना पड़ेगा, फटाफट से जाओ radioolive.qa इज द हैंडल, वहां पर फॉलो कीजिए हमें. कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स मिल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर लो उसमें. एंड वट एवर वी कीप पोस्टिंग यू नो उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए, हमें पता चलना चाहिए कि चीजें आप तक पहुंच रही हैं. एंड राइट नाउ वी आर डूइंग दिस एंटायर सीरीज ऑफ यू नो प्रीवियस वर्ल्ड कप्स फीफा के, और उसकी जो हिस्ट्री है, जो अमेजिंग मैचेस हुए हैं, ट्रिवियाज एंड एवरीथिंग, अमेजिंग स्टोरीज प्लेयर्स की, वो सब वहां पर आपको मिलेगा. सो फॉलो कर लो सो दैट कुछ मिस आउट ना कर जाओ. और अभी जो मैं गाना छोड़कर जा रही हूं, ओहो मैं वापस आऊंगा मूवी से, मैं भी कल वापस आऊंगी बाय द वे. तो वो मूवी से गाना आ रहा है, वो नहीं, बहुत सुंदर गाना है, आई एम टेलिंग यू, आदित्य रिखारी और रहमान की आवाज में. एंड इफ यू हैवंट वॉच दिस मूवी अगेन, आई विल सजेस्ट डू वॉच इट. अर्जित रेडियो जियो बिंदास.
0: Radio Olive Pie.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ah, yeah, Ghana, fresh. Ah.
0: Fresh song of the hour.
2: Yeah, Ghana.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंद।

योगिता ने की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर थोड़े नाल और जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। कैसा रहा आपका आज का दिन? क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है कि लोगों के बीच में हाय तौबा मची हुई है, होगी भी क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है दोपहर के टाइम पे स्पेसिफिकली, कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनको वाकई में अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अपने आप को अच्छे से कवर कर लीजिए एंड पानी का बॉटल जो है वो अपने साथ में रखिए। और आप लोगों को वाटर रिमाइंडर देना एटलीस्ट इतना तो है, हमारा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय द वे, आज का दिन जो था वो आपका कैसा रहा? चार घंटे अपने ही अच्छे से हाल पूछूंगी। प्यार मोहब्बत से घबराहट नहीं होती, गर्मी से घबराहट होती है।

ताजा ताजा बन गया है जी 3311063। और आपके दिन के बारे में बताइए आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ। खुश रहो यार, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। Experience more with ओरिडू।
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम। मैं हूँ जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

नेहा कक्कड़ यू हनी सिंह आज के जो दो मैचेस बाकी बचे हुए हैं, रात के 8 बजे पोर्चुगल और कांगो के बीच में होने वाला है और रात के 11 बजे जो है इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच में होने वाला है ये मैच। तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो या फिर इनमें से अगर आपको कोई नई टीम है, कोई दूसरे वाली टीम आपकी फेवरेट है, आप मुझे बता सकते हैं 3311063।

0: राइट अपने आप ही मार देगा इसको मरने की जरूरत नहीं है। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कर गए देर जी अविंदास
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर In association with Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
1: your trusted remittance partner.
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
3: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
3: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
5: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
6: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
7: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
6: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
7: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
9: आरजे सिमरन के साथ।
1: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हाय गाइस, सोनिया की दादी की हलचल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है आपके साथ। आज ना मैं सुदेव का शो सुन रही थी मॉर्निंग में, वो बात कर रहा था इस चीज के बारे में कि कतर में हमको जो है वो कुछ आदतें जो है वो लग जाती हैं कतर में रहते हुए। तो मेरे दिमाग में वो चीज जो थी वो क्लिक हुई, मैंने सोचा कि आप लोगों से उसके बारे में बात करूंगी। एक चीज की आदत जो है वो मुझे कतर में आके लगी और बहरीन में भी लगी है, मतलब गल्फ में आप जब आए तो आपको ये आदत लगती है। अब जब मैं आपको ये चीज बोलूंगी तो आपको भी रियलाइज होने वाला है, वो है टिश्यू यूज करने की आदत। मतलब मेरे लेफ्ट हैंड में हमेशा टिश्यू जो है, अगर मैं कुछ खा रही हूं तो वो रहेगा ही रहेगा। मतलब फॉर नो रीजन आपके हाथ में टिश्यू रहता है या फिर आपके पास में टिश्यू का डिब्बा रहता है। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूं कि मैं अगर कुछ खा रही हूं या मैं जिस टेबल पे बैठी हूं सो वहां पे टिश्यू का बॉक्स जो है वो ना हो। इतनी गंदी आदत जो है वो इस चीज की पड़ चुकी है। वो चीज का एहसास पता कब होता है? जब आप इंडिया जाते हो। अब इंडिया में तो हम इतने टिश्यूज नहीं यूज करते थे, जैसे मेहमान आते थे टेबल पे एक टिश्यू रख देते थे थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड दिखने के लिए, बट या हम नॉर्मली नहीं करते हैं। बट अब इतनी ज्यादा आदत पड़ गई है कि अब इंडिया में जब जाते हैं तो सबसे पहले जब मेरा रूम में देखती हूँ तो मुझे मेरे रूम में एक टिश्यू बॉक्स जो है वो चाहिए। बाथरूम में वो अलग से चाहिए क्योंकि आप फेस भी उसी से क्लीन कर रहे हो। सो बताओ आपको क्या लगता है कि कतर में रहते हुए आपको कौन सी जो है वो आदत लगी है जो पहले नहीं थी? 3311106 पर आप मुझे बता सकते हैं।

यार मतलब ख्यालों में ही आ रहा है, जिंदगी भी नहीं आ रहा. सॉरी भाईजान, बुरा लगता है यार मुझे. सलमान खान को मुझे लगता है बर्दाश्त करने वाला कोई बना नहीं है. आएगा और ये लग गया यार.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए.
3: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
3: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
4: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
3: Offer valid till 30th June 2026. Doha Bank, Lulu, Mastercard, Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग. मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
9: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

वीकेंड की खुशबू आती है यार। कोई बात नहीं, आज का वेंसडे निकल गया है और कल थर्सडे, तो मैं कंसीडर करती हूँ इट्स वीकेंड। आपको थोड़ा सा वो मैं कर रही थी। अब वीकेंड के टाइम भी क्या होता है कि हम लोग बाहर से खाते हैं, बाहर से खाना जो है मंगाते हैं, और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बाहर से खाना मंगाया और खा लिया। अब जो अकेले अकेले लोग रह रहे हैं, है ना, जो लोग फैमिली के साथ नहीं रह रहे, वो तो जो फैमिली के साथ है वो दूसरे टाइम पे सारा खाना जो है वो निपटा देते हैं। अकेले लोग क्या होता है कि यार आधी दाल खा ली, आधा पनीर खा लिया, साइड में रख दिया, वो डाइनिंग टेबल पे ही पड़ा हुआ है, रूम में ही पड़ा हुआ है, तो उसके बाद फिर शाम को वही खा लिया। ऐसे टाइम पे ये गर्मी है दोस्त, है ना। सो मैं पढ़ रही थी आज, हेल्थ मिनिस्ट्री ने मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स जो है वो शट डाउन कर दिए हैं, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और ऐसे टाइम पे हो सके तो बाहर से जब आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वैसे तो फ्रेश बनाइए, है ना, लेकिन अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको उसी के उसी टाइम कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन अगर खाना भारी मात्रा में आ गया है, या तो आप किसी के साथ शेयर कर दीजिए, लेकिन अगर आपको शेयर करने के लिए कोई नहीं है तो प्लीज फ्रिज में रख दीजिए। और फ्रिज में कुछ लोग क्या होता है कि पहले गर्म करेंगे, उसमें से आधा खाएंगे, फिर गर्म किया हुआ फिर फ्रिज में रख देंगे। नहीं, एक ही बार उतना निकालिए जितना आप खाना चाहते हैं। सो या अपनी हेल्थ का ध्यान रखो यार। जी बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

0: भूल जाना ना हो जहाँ वही ज्यादा है। उल्लू का बड्डा है 6:06 स्टूडियो की घड़ी पे। एक गल सुन ला कन्न खोल के,
1: रेडियो ऑलिव पर व्हाट अ वायरल क्या बात है आरजे सिमरन के साथ व्हाट अ वायरल
0: ये बात है। यार बड़ी क्यूट वीडियो मैंने देखी, तो शादी हो रही होती है, एक इंडोनेशियन ग्रूम रहता है, सो शादी हो रही होती है जिसमें जब दुल्हन जो है, जो ब्राइड जो है वो सज के एकदम सामने आती है और ग्रूम उसको बस देखते रहता है और देखते देखते वो फेंट हो जाता है यार कि वो मतलब आई डोंट नो इस फीलिंग को मैं क्या नाम दूँ, बट यस सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है यार। और पता नहीं वो मुझे लगता है कि शादियों में जब किसी की शादी होती होगी बहुत सारी रस्में, बहुत सारा काम, ये सारी चीज़ें रहती होंगी, तो शायद हो सकता है बेचारे ने कुछ खाया पिए ना हो लेकिन वो दुल्हन को देखते ही फेंट हो रहा है यार। बहुत लोग उसको क्यूट भी बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे का रीजन सिर्फ उतना ही है कि दुल्हन को देख के, वो ब्राइड को देख के पहली बार ऐसे फेंट हो गया या फिर कुछ और है वो नहीं पता, बट वीडियो क्यूट है यार। 6:07 स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर आपके साथ, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार को भेजने के लिए मैसेजेस में लपेट के।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
7: Hey, this is Liana De Cruz.
8: This is me, Ritik Roshan.
9: Hi, I'm Alia Bhatt.
10: Hi, I'm Hu Vivekanand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindaas.
11: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
12: आरजे सिमरन के साथ.
13: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
14: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
15: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: तेरी धड़कनों में, याद कर रही थी कि मुझे लिरिक्स याद है कि नहीं याद है। याद होते होते भी कभी कभी मैं गलत लिरिक्स जो है वो गा देती हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा। की दसा भैन जी, मौसम दे ते ओही हाल ने। 36 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है एंड फील्स लाइक 34 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 21 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और ह्यूमिडिटी जो है वो 26% है। सो आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस एंड सरप्राइजिंगली जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो है 28 डिग्री सेल्सियस। लगता है शाम को बाहर का मौसम सुहाना होने वाला है। सुन रही है रेडियो ऑलिव और कह दे रही है जय अविनाश।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सर्विस और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए, लूलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक, लूलू, मास्टर कार्ड, प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है, और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सुनियो कितना दिखी हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। देखो यार, जब आप किसी भी जगह किसी भी कंपनी में काम करते हो तो वहां पर जो है माहौल जब तक अच्छा है आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही माहौल अच्छा ना हो तो जिनमें जो है ना वो सबर नहीं है, जो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्पेशली इस लाइन में जो है वो जेंजी आ जाते हैं भाई। छोटी सी चीज जो है ना ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं देख रही थी एक न्यूज जिसमें रेजिग्नेशन लेटर में उसने क्या लिखा, डियर सर मेरे पापा ने भी कभी मेरे को ऐसा नहीं डांटा आज तक, बस रिजाइन दे दिया, शॉर्टेस्ट रिजाइन एवर। 6:51 स्टूडियो की घड़ी भी हो चुकी है। सिमरन कौर है आपके साथ। बाहर क्या कहता है मौसम।

0: जगे रहिए, 9 बजे तक हूँ आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah,

0: fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Doha Bank और Lulu लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu Shopping Voucher।
1: Lulu Stores पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu Points के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

कौर का नया गाना है यार, मैं कहती सुनियो कितना दिखी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ यार। ये जो है ना, हर कोई इस चीज के बारे में बात करता है, ऑफिस सबको जाना अच्छा लगता है कि ठीक है यार ऑफिस जाना चाहिए, घर पे बैठे बैठे भी क्या करेंगे। लेकिन जब ऑफिस जाने का सुबह टाइम होता है ना, तो सबको यही लगता है कि यार आज एक बहाना सोच लें, आज एक बहाना सोच लें, 5 मिनट और सो ले, 10 मिनट और सो ले। सो एक स्टडी जो है वो ये कहती है कि अगर आप 10 बजे से पहले ऑफिस में जाते हैं तो ये आपके माइंड एंड बॉडी के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर है। मतलब टाइम तो मुझे लगता है कि आप जैसा भी रख लो ना, आपको उठने में दिक्कत होगी होगी। फॉर एग्जांपल मेरा टाइम जो ऑफिस का लेट है, मैं मतलब पौने दस के अराउंड जो है वह मैं उठती हूँ। ओके, उस टाइम पे भी मुझे लगता है नहीं यार मेरे को नहीं उठना। लेकिन आप लोग जो है वो 5 बजे 6 बजे जब ऑफिस जाने के लिए उठते हो ऑलरेडी, तो आप लोगों के लिए तो वाकई में माइंड एंड बॉडी टॉर्चर मेरी तरफ से मुझे लग रहा है। सो अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या लगता है कि ऑफिस जाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होना चाहिए, आप मुझे बताइए 3311063 पर वॉइस नोट करके बताओ यार। रेडियो वाले बोल के तेरी अच्छी बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: सत श्री अकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के
4: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हां जी सिमरन कौर है। इस गाने की खूबसूरती ना और भी बढ़ती जाती है जितना मैं इसको सुनती हूँ। ये वाला

0: के नंबर में एक वर्ड को डिकोड करेंगे सिग्मा और सिग्मा मेल. सो जेंजी जो इस वर्ड जिस या फिर जेन अल्फा जो इस स्लैंग को यूज करते हैं, लाइक सिग्मा मेल हम उनको बोल देते जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा कूल और हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं या फिर लाइक सेल्फ एश्योर्ड होते हैं. और मतलब उनको लगता है कि भाई मतलब हम लोग जो हैं वो सब कुछ अकेले जो हैं वो संभाल लेंगे और दे आर लाइक कूल, उनको जरूरत नहीं है किसी की. तो सो उसको बोलते हैं सिग्मा मेल या फिर आप सिग्मा बोल सकते हो, राइट. 7:16:22 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं. थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए. मैं एक एक करके रिप्लाई करूंगी और इसी घंटे में हम नेम गेम भी खेलने वाले हैं. तो वापस लौट के नेम गेम तैयार हो जो आप सबके नाम लेने वाली हूं मैं.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ।

ये जो टाइम है वो आपका टाइम है दोस्त। अब आप चाहते हैं कि मैं आपका अब नाम जो है वो रेडियो पर ले लूं, क्योंकि आप मुझे इतनी देर से सुन रहे हो यार। सो आप मुझे फटाफट से अपना नाम बता दो। वो कैसे बताएंगे, बोल के नहीं बताना, लिख के बताना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311106 3। जी हाँ, 3311106 3 पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए। अगला गाना शुरू होने से पहले दोस्त, अगर आपने अपना नाम मुझे भेज दिया लिख के, तो मैं बोल दूंगी। तो अभी नाम आने शुरू हो गए। ओके फाइन, चलिए नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। मौर्या पटेल, नौमान, मूर्ति, रियांश, नारायण, मोहम्मद वसीफ, रिजुल, मोहम्मद, हिफ्जुर रहमान जी, थैंक यू सो मच, शेख अहमद जी, थैंक यू सो मच, दीपिका पटेल जी, थैंक यू सो मच, शेजू जी, स्मिता जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निश्चल जी, थैंक यू सो मच, दीपिका जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिवू जी, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों के नाम ले रही हूँ दोस्त, वो बार बार ना लिखो, ताकि बेचारे दूसरों का नंबर लग जाए, वरना आप ही का नाम बोला जा रहा है। कबीर जी, थैंक यू सो मच, लामिया अख्तर जी, थैंक यू सो मच, कबीर जी, थैंक यू सो मच, फुरकान अली जी, थैंक यू सो मच, फहाद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शहजाद अली जी, थैंक यू सो मच, हमद जी, थैंक यू सो मच, सनाया इकबाल जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी, इरफान जी, थैंक यू सो मच, रेहान जी, थैंक यू सो मच, हिना फिरदौस जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, क्विकली अफसफदर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सुमोन उद्दीन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है दोस्त, फिर मत कहना। शाबाज गुल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कबीर, मैं ऑलरेडी आपका नाम ले चुकी हूँ। आशिक जी, थैंक यू सो मच। जफरुल्ला जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रीमा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों ने अपने नाम सुन लिए ना रेडियो पे, अब आप थैंक यू लिख के भेजो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना लो।

0: भाई साहब ये सुन के आपको पानी पीना तो याद आ ही गया होगा।
1: रेडियो ऑलिव वाटर रिमाइंडर,
2: पी लिया पानी।
3: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
3: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर, मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: प्यारी चीज कल मैंने पढ़ी थी और मैंने शेयर भी की थी मेरे सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि वो जो अब मुझे एक बूंद भी नहीं चाहिए, वो जो अब मुझे एक बूंद भी नहीं चाहिए, ना जाने क्यों मेरे अंदर समंदर बन के बैठा हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको किसी को पाने की चाह जो है वो मिट जाती है। कुछ चीज अगर आपको लाइफ में चाहिए होती है, वो चीज अब आपको जो है वो चाहिए नहीं होती, लेकिन वो चीज आपको फिर मिल जाती है, वो इंसान भी आपको वो मिल जाता है, लेकिन फिर आपको चाह ही नहीं है यार उस चीज की या फिर उस इंसान की। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप किसी चीज के लिए इतना तड़पते हो, इतना तरसते हो जब वो आपको नहीं मिल रही होती है, लेकिन जब वो चीज आपको मिल जाती है तो उसको पाने की चाह जो है ना वो खत्म हो जाती है। सिमरन कौर क्या बड़ी बड़ी बातें करती हूँ यार, ऐसा ही है यार अपना तो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि जो चीज आप चाह रहे हो और वो चीज जब आपको वो मिल जाती है तो उसकी वैल्यू को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी सामने वाले का भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कंडीशन सप्लाई है चीज़ों में और रिश्तों में, इंसानों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो वैल्यू और केयर जो है वो दोनों तरफ से आती है।

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
5: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
5: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
3: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेत। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm number one.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
10: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जी मैं कहीं सोने की दादी की हलचल सच अकाल सिमरन कौर है आपके साथ एंड इट्स टाइम
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: एक चुटकी सॉन्ग में ये चुटकी भर सॉन्ग आपको सुना रही हूँ बताओ ये कौन सा गाना है यार बहुत प्यारा गाना है और ये गाना मुझे बहुत पसंद है जवाब देने के लिए प्लीज वॉइस नोट भेजिए हे सिमरन अपना नाम बताइए और बताइए कौन सा गाना है 3311063 पर भेज दीजिए गा के भेजेंगे तो बढ़िया रहेगा बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है एक बार वापस से सुना रही हूँ चलो इंतजार कर रही हूँ सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गोर के अंदर जियो बिंदास
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
5: कूल सॉन्ग

0: या मिनट्स का सरप्राइज क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हां जी बह गया हंजुआ का दरिया चुटकी सॉन्ग में ये चुटकी पर गाना आपको सुनाया था और थैंक यू सो मच जो लिखे हुए जवाब है वो मत किया करो वॉइस नोट भेजा करो
1: Hey Simran, hi, this is Atikya.
0: And
1: the song is कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए
0: तेरा मिलना है इस रब का इशारा मुझे आया है मुझे अपनी आवाज ही इतनी गंदी लगती है बट बिल्कुल सही है यार गाना यही है राब्ता बहुत ही प्यारा गाना है
2: तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं
0: और कैसे कहूँ
2: हम तो तेरे ही लिए थे तेरे ही लिए तो है
0: बस थोड़ी देर में तेरे लिए तो आते हैं सुंदरी रेडियो ऑलिव गोर के दरिए जी ओ बिंदास

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

चलो रात और बात दोनों खोने वाली है क्योंकि सिमरन कौर जाने वाली है, लेकिन रेडियो चलता रहेगा। मैं नाइट लाउंज को एंजॉय करिएगा। तो कल शाम को 5 बजे फिर से होती है मुलाकात, अकेले तो नहीं आऊंगी सॉरी वीकेंड को साथ में लेके आने वाली हूँ, तो अपन करेंगे फन, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। सो अभी के लिए वीकेंड के प्लान भी बना लो। कल मैं ऑफिस का काम ऐसे छुटकी बजा के, जब तक तो मैं आऊंगी तब तक तो आपका ऑफिस का काम सब निपट गया, फ्री एकदम उड़ते हुए पंछी बनू, उड़ते फिर मस्त गगन वाला सीन हो जाएगा आपका। तो सो अभी के लिए खाने में देर ऐश कर दे रहे हो, चेहरे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

गुड इवनिंग कतर, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो आज एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करती हूं। हम सब ना बहुत सारी मूवीज देखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सीन फिल्म से निकलकर हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग DDLJ का ट्रेन सीन जीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सेम वैसे ही जैसे काजल और शाहरुख थे, वैसे ही वो भी अपनी लाइफ में कभी सेम कुछ कर पाए। कुछ लोग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली रोड ट्रिप करना चाहते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और कुछ लोग वेकअप सिड की मुंबई मॉर्निंग्स, राइट? और कुछ इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम पूरी मूवी नहीं जीना चाहते, बस एक सीन, एक मोमेंट और एक फीलिंग। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान स्टोरीज कनेक्ट करता है, क्योंकि स्टोरीज अलाउ अस टू एक्सपीरियंस लाइफ विदाउट एक्चुअली लिविंग इट। और मैंने तो ये हमेशा फील किया है कि जब भी मैं कोई मूवी देखने जाती हूँ, उसके कुछ अच्छे ट्रैवल सीन्स होते हैं या फिर कुछ अच्छी चीज़ें जब मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये बस लाइफ में चाहिए। सो इसीलिए हम किसी कैरेक्टर के साथ हंसते हैं, रोते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और कभी कभी उसकी लाइफ का एक सीन अपना बना लेते हैं। सो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे चूज करना पड़े तो शायद मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का रोड ट्रिप चूज करूंगी। ना कोई डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट, ना कोई डेडलाइन, बस दोस्त और एक सफर। तो आज आप मुझे बताइए कि कौन सी मूवी का सीन है जो आप एक बार लाइफ में, मतलब अपनी रियल लाइफ में जीना चाहोगे और क्यों। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

So, आज ना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं. सबसे ओवररेटेड चीज क्या है? नहीं, आज हम पोलाइट नहीं रहेंगे. देखिए, अगर जनरेशन की कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं हर जनरेशन की, तो कुछ ओवररेटेड भी होती हैं. फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसिव कॉफ़ी. ठीक है, आप 25 रियाल की कॉफ़ी लेते हो और फिर उसका फ़ोटो डालते हो ताकि सबको पता चले कि आपने ये एक्सपेंसिव यू नो कैफ़े ट्राई किया. और फिर बात करते हैं वेडिंग हैसल की और हैशटैग्स की. सो कॉर्पोरेट मीटिंग्स जो ईमेल से ही हो सकती थी, और मेरा फेवरेट बताती हूँ, लेट्स कैच अप सून, जिसका मतलब होता है कि हम कभी नहीं मिलेंगे. और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बिहेवियर जो हम हमारा जो बिहेवियरल साइंस है वो कहता है कि ह्यूमन ऑफन वैल्यू थिंग्स मोर व्हेन दे बिकम सोशल सिंबल्स, राइट? यानी प्रोडक्ट से ज़्यादा उसकी इमेज इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो आज आप सच बताना कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे ओवररेटेड चीज़ क्या है. 3311063 इज माई नंबर. एंड आई बिलीव कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवररेटेड तो हैं. सो बताओ मुझे, आप फटाफट से व्हाट्सएप कर सकते हैं 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो आज की किताब अगर मैं बात करूँ तो एक कोरियन बेस्ट सेलर बुक है और मुझे लगता है कि ये किताब गर्ल्स के लोगों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल होगी क्योंकि स्टोरी एक वेमन की है. लाइफ फास्ट चल रही होती है, प्रेशर भी है, एक्सपेक्टेशंस भी हैं और फिर एक दिन वो सब छोड़कर एक बुक स्टोर खोल देती है. अब सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन किताब एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है. क्या बिजी रहना और सक्सेसफुल रहना सेम बात है? आज हम सब बहुत बिजी हैं, कैलेंडर फुल है, फोन एकदम फुल है, इनबॉक्स एकदम फुल है, लेकिन क्या हम फुलफिल्ड भी हैं? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव पर और ये है किताब जिसके बारे में बात कर रही हूँ. साउथ कोरिया जो है दुनिया का सबसे हार्डवर्किंग कंट्रीज में से एक माना जाता है, इसीलिए बुक वहाँ की इतनी पॉपुलर किताब है. लोगों को लगा कि कोई फाइनली स्लो लाइफ की बात कर रहा है और स्लो लाइफ का मतलब लेजी लाइफ नहीं है, स्लो लाइफ का मतलब इंटेंशनल लाइफ है. सो आई वॉज थिंकिंग कितनी अच्छी चीज़ है, जहाँ पर मुझे लगा कि हमने ये सवाल कभी सोचा क्यों नहीं. सो इस किताब का नाम है वेलकम टू द ह्यूमन डूइंग बुकशॉप. मतलब आई वॉज थिंकिंग कि यार कितनी अच्छी किताब है, मुझे पढ़ना चाहिए इस किताब के बारे में. देन आई स्टार्टेड दिस बुक. आप भी ज़रूर सोचिएगा कि आप अपनी आइडियल लाइफ कैसे जीना चाहते हो. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो.

सो वी वर टॉकिंग अबाउट बुक और अब बात करते हैं लाइफ का सबसे फनी ट्रुथ. पता है आपको क्या है, कई बार प्लानिंग से ज़्यादा ना एक्सीडेंट्स काम आ जाते हैं. मतलब चाहे वो माइक्रोवेव है, पोस्ट इन नोट्स हैं, सब एक्सीडेंटल डिस्कवरीज ही हैं. आपको पता है, और सिर्फ साइंस में नहीं, लाइफ में भी कई सारे लोग अपने स्पाउसेस से एक्सीडेंटली मिलते हैं, अपने पार्टनर से, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी. कई लोग रॉन्ग इंटरव्यू में गए और राइट जॉब उनको मिल गई. कई सारे लोग फ्लाइट मिस कर गए और फिर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स मिल गए. साइकोलॉजी में एक वर्ड है, द वर्ड इज सेरेंडिपिटी. ओके, मतलब है फाइंडिंग समथिंग वंडरफुल व्हेन यू वर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. अब आप सोचिए, आप ढूंढ तो कुछ और रहे थे लेकिन मिल कुछ और गया. और मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में थोड़ी सी सेरेंडिपिटी होती है, क्योंकि लाइफ GPS की तरह सीधी नहीं चलती. कभी कभी रॉन्ग टर्न की बेस्ट टर्न हमारे लाइफ का होता है. और आज मेरा आपसे सवाल भी यही है कि आपकी लाइफ की बेस्ट एक्सीडेंट स्टोरी क्या है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

वेलकम बैक, गुड इवनिंग। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आज एक इंपॉर्टेंट बॉलीवुड इशू डिस्कस करते हैं। हर मूवी में हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन भी होता है, लेकिन कभी कभी फिल्म कोई और चुराकर लेकर जाता है, विच इज साइड कैरेक्टर। और ऑनेस्टली कई बार साइड कैरेक्टर्स हीरो से ज्यादा याद रह जाते हैं। आप सोचिए, मुन्ना भाई आपको याद है, लेकिन सर्किट वो भी याद होगा, हेरा फेरी याद है, लेकिन बाबूराव तो मतलब लेजेंड थे उसमें। पर कभी कभी एक कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग होता है कि ऑडियंस कहती है यार इसकी अलग मूवी बनाओ। सो हॉलीवुड में साइड कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी की वजह से स्पिन ऑफ फिल्म्स का ट्रेंड शुरू हुआ और आज कई सारे कैरेक्टर्स ओरिजिनल हीरो से ज़्यादा फेमस हैं। और लाइफ में भी ऐसा ही होता है यार, हर फैमिली में एक साइड कैरेक्टर होता है। वो फनी अंकल हो सकते हैं, कोई ड्रामेटिक बुआ हो सकती है, कोई नेबर का पर्सन हो सकता है, और कई बार वही लोग लाइफ की बेस्ट स्टोरीज जो है वो क्रिएट कर जाते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग कि आप अगर ये सोच रहे हो कि लाइफ में सब कुछ बड़ा ही बोरिंग चल रहा है एंड यू आर फीलिंग लाइक एनी साइड कैरेक्टर, तो हो सकता है कि कल जो है आप इस लाइफ में कुछ बहुत ही अमेजिंग क्रिएट करो। बस कुछ ना कुछ सोचते रहना, क्रिएट करते रहना। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

So, आज एक बहुत खूबसूरत किताब की बात करते हैं. What are you looking for is in the library. ये किताब का नाम है और टाइटल सुनते ही लगता है कि बुक्स के बारे में होगी, क्योंकि जिस किताब के बारे में आप सोच रहे हो वो लाइब्रेरी में है, ऐसा ही किताब कहती है. लेकिन एक्चुअली ये लाइफ के आंसर्स के बारे में. स्टोरी तो बहुत ही सिंपल है. लोग लाइब्रेरी में आते हैं एक चीज़ ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें मिल कुछ और जाता है. और मुझे लगता है कि सिर्फ लाइब्रेरी की स्टोरी नहीं होती, इस लाइफ की भी स्टोरी है, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. कभी हम बहुत बड़ा कोई अमाउंट ढूंढ रहे होते हैं, मिलता क्या है? कॉन्फिडेंस. कभी हम सक्सेस ढूंढ रहे होते हैं और मिलती है दोस्ती. कभी हम आंसर ढूंढ रहे होते हैं और मिलता है नया क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च कहती है कि ह्यूमंस ऑफन डिस्कवर देयर पैशन एक्सीडेंटली, नॉट बाय प्लानिंग, बाय एक्सप्लोरिंग. इसीलिए लाइब्रेरीज मैजिकल प्लेसेस होते हैं. आप एक बुक लेने जाते हो और वापस दूसरे आइडियाज के साथ आते हो. तो आज रात का जो सवाल है, अगर आप किसी लाइब्रेरी में एंटर करें तो सबसे पहले किस सेक्शन की तरफ जाएंगे? ट्रैवल, बिजनेस, हिस्ट्री, फूड या फिर फिक्शन? 3311063 is my number and you are listening Radio Olive. Stay tuned, Jio, Bindas.

सो एवरी डे आई टॉक अबाउट कतर और स्पेशली उन लोगों की जो पहली बार यहाँ आते हैं. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. कतर को लेकर बाहर के लोगों के माइंड में बहुत सारे अजम्पशंस होंगे, पर जब वो यहाँ आते हैं या फिर किसी कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विजिटर्स कहते हैं कि उन्हें इतना सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, फिर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह पर इतनी सारी नेशनैलिटीज़ हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस, कल्चर, मॉडर्निटी साइड अगर आप देखना चाहो तो आपको रेगिस्तान मिल जाएगा, फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन है. फेवरेट चीज़ अगर मैं बात करूँ तो एयर कंडीशनड बस स्टॉप्स हैं, मतलब आपको धूप में खड़े रह के किसी बस का इंतज़ार नहीं करना, आपको हर जगह पर एसी लगा हुआ मिलेगा, जो पहली बार देखकर लगा था कि लिटरली फ़ोटो लेते हैं यार. सो कतर की पॉपुलेशन का मेजॉरिटी जो है वो बाहर के लोग ही हैं, इसीलिए हर इंसान का एक्सपीरियंस यहाँ पर अलग है. एंड आई फील सो प्राउड कि मैं यहाँ पर रहती हूँ. आपके हिसाब से कतर की कौन सी बात है जो विजिटर्स को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करती है, और जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे तो आप किस चीज़ को लेकर सरप्राइज हुए थे? 3311106 माय व्हाट्सएप नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: This hour is brought to you by
3: Homes R Us. We complete your home.
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

की रात का ये आखिरी टॉपिक है और मेरा पर्सनली फेवरेट भी है। आजकल हर दिन कोई नया ट्रेंड चलता है, लेकिन मैं उल्टा सवाल पूछना चाहती हूँ कि पुराने ट्रेंड्स में क्या वापस आना चाहिए। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज। हैंड रिटन लेटर्स जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे, फोटो एल्बम्स जो हम सालों तक संभाल के रखते हैं और हर बार निकाल कर दूसरों को दिखाते हैं, बर्थडे कार्ड्स जो मिलना ही बंद हो गए हैं, बस स्कूल में ही मिला करते थे, मिक्स टेप्स, ठीक है, संडे फैमिली मूवी नाइट और मैगजीन कल्चर, वो भी एक्साइटमेंट के साथ। जब किसी का लेटर या पोस्ट कार्ड आता था तो इतना अच्छा फील होता था। मैं आपको बताती हूँ, रिसर्च कहती है कि हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो डिजिटल मैसेज से ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इवन आज भी जब मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ तो आई ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक यू नो नोट लगाऊँ और अपनी मन की बात लिखूँ, क्योंकि उसमें अलग ही एफर्ट दिखता है, टाइम दिखता है, इंटेंशन दिखता है। शायद इसीलिए आज भी पुरानी डायरीज और लेटर्स लोग संभाल कर रखते हैं, व्हाट्सएप चैट्स कभी कोई संभाल कर नहीं रखता। तो आज रात का सवाल भी यही है कि ऐसी कौन सी पुरानी चीज़ या ट्रेंड है जो आपको लगता है कि 2026 में वापस आना चाहिए, और अगर आज वापस आ जाए तो सबसे ज़्यादा आप खुश होगे। सो येस, आई एम गोइंग फॉर नाउ, कल मिलेंगे सेम टाइम पर और वीकेंड भी है कल, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। फॉर नाउ नंबर है 3311063, मैं व्हाट्सएप पर रहूँगी और अभी के लिए आई हैव टू से बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।